नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन मंगलवार है। शक संवत 1948 दे जेठ महीने दी 19 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 9 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साढ़े अज की सभा के प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने।

दास सजीत से सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस और दास सज के दो मिनट में हिंदी गीत संगीत का प्रोग्राम होएगा। प्रोग्राम होएगा गीत बहार। ग्यारह बजे तुम सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस और ग्यारह बज के दो मिनट में थोड़ी फरमाइशा पूरा करता है सिलसिला होएगा। प्रोग्राम होएगा पंजाबी तड़का। बारह बजे तुम सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस और बारह बज के दो मिनट में प्रोग्राम होएगा होम स्वीट होम। मेलोडीज कर दे पल होंगे। प्रोग्राम होएगा मिड डे मेलोडीज दोपहर एक बजे। एक बज के 40 मिनट साडे प्रदेशिक चैनल तो पंजाबी दे विच खबरां सुनोगे और एक बज के 50 मिनट प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज इसे तरह जारी रहेगा। दो बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम दिल आज शायर है और दो बज के 30 मिनट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होएगा उमंग। तीन बजे का प्रसारण सुनोगे रेनबो दिल्ली तो सुनोगे प्रोग्राम तुसी रेडियो डॉक्टर। चार बजे एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से फिर तो जुड़ जाओगे। प्रोग्राम होएगा हेलो जलंधर और पांच बजे युवा वर्ग अपना प्रोग्राम पेश करेगा युव वाणी। जिंदगी नु हसीन बनाते हुए पल होंगे। प्रोग्राम होएगा लव यू जिंदगी शाम 6 बजे और 6 बज के 20 मिनट ते साडे प्रादेशिक चैनल तो प्रादेशिक खबरां सुनोगे और 6 बज के 30 मिनट ते लव यू जिंदगी प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। सात बजे तुसी सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस और सात बज के दो मिनट ते फिल्मी दुनिया दी सैर करांदा होया सिलसिला होएगा। प्रोग्राम होएगा फिल्मी दुनिया। आठ बजे तुसी सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस और आठ बज के दो मिनट ते आज दिन मंगलवार है ते सिलसिला होएगा इन्फो टाइम सा। नौ बजे तुम सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस और नौ बज के दो मिनट पे प्रोग्राम होएगा दिल चाहता है। दस बजे तुम सुनोगे प्रोग्राम शामी गजल और दस बज के 30 मिनट पे प्रोग्राम सुनोगे एक प्यार का नगमा है। इसी साडे आज से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से 6 बज के 5 मिनट हो रहे ने वेला हो रहा है प्रोग्राम वंदना नू सरवन करन दा। आओ प्रोग्राम दे सफर दा आगाज करने मूल मंत्र दे नाल।

राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभौ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान।

हरे बिन कौन सहाय मन का, परमात्मा तो बिना कोई होर इस मन दी सहायता करन वाला हो ही नहीं सकता।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन विखे आयोजित समारोह दे विच वख वख हथियारबंद पुलिस बलों के पुलिस कर्मचारियों नू बहादरी पुरस्कार प्रदान किए। लोक सभा स्पीकर उमा बिरला कल चंडीगढ़ च राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन दो कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा पछमी एशिया विच टकराव दे बावजूद देश विच कच्चे तेल LPG अते कुदरती गैसा दी सप्लाई पूरी तरह आम वांग बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर दे विच 100 उद्योगिक पार्कां दे विकास नूं तेज करन लई भव्य पोर्टल दी शुरुआत कीती है। भारतीय दूताघर ने ईरान विच हाल ही दे दिनां च विगड़दी स्थिति दे मद्देनज़र भारतीय नागरिकां नूं ईरान दी यात्रा तों बचण दी सलाह दित्ती है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल 355 नौजवानां नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी अते हवाला नेटवर्क दा पर्दाफाश करदिया एक अफगान नागरिक समेत 4 मुलाजमां नूं गिरफ्तार कीता है। पंजाब दे स्थानक सरकार बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मिशन क्लीन पंजाब दी शुरुआत कीती है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों सिक्ख्या विभाग दिया 5 जथेबंदियां नाल मीटिंगां, कहा सरकार गलबात अते सहमति राही मुलाजमां दे मसले हल

रणवीरी वचनवादे। अते मौसम विभाग ने अगले 3 दिन लई पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अते दिल्ली विच लू दी पेशेनगोई कीती है। ते ए सन हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

क्या बात है, क्या बात है जी। मैं क्या थोड़ी तो कर भी दादी, आवाज आ रही है मेरे स्टूडियो से भी आ रही है। वाह जी वाह, सवेरे सवेरे जी आ वाली आवाज है ना, दिन नु तरो ताजा कर देती है। मैं देखिया मैं थोड़े वेड़े भी, हाँ तुसी पानी दा वो जड़ा बाउल भर के रखिया ना अपने बन्ने दे उत्ते, जिन्नू असीं कह दिंदे बनेरे ते, उत्थे अही आवाजा तां आंदियां ने। और मॉर्निंग अलार्म भी जेकर कहिए तो इन आवाज़ों के नाल ही बहुत खूबसूरत लगता है। तैयार हो रहे होंगे है ना जान वास्ते, क्योंकि आज मंगलवार है और हफ्ते का दूसरा दिन है और तारीख भी 9 है। बिल्कुल जी, और इस खूबसूरत जे सफर के निशा बिल्कुल थोड़े नाल तैयार पर तैयार है। मॉर्निंग वॉक करके आ गए फिर? ओके, इस दो आज मैंने तुसी दसो कि आज तुसी केड़ा योगासन कीता, प्राणायाम कीता, अनुलोम विलोम कीता या फिर सूर्य नमस्कार कीता। अच्छा जी, मैं तो सारिया चीजा नु थोड़ा थोड़ा समा जड़ाया दिता। वाओ वाओ वाओ, ओके तो साड़ी जिहड़े यंगस्टर्स ने ना सवेरे सवेरे कर रहे सी जूम्बा। ओ वाओ, मैं देखिया डांस करते भी उसी पार्क दे विच, बिल्कुल सच्ची बड़ा मजा आया उन्होंने देख के। एनर्जी ना डबल ट्रिपल हो गई मेरी तो बिल्कुल। जूम्बा के जोड़े स्टैप से ना, मैं क्या पूरी ना जिन्हों कह दें ना, ताे अंदर का जो पसीना है ना जरा कि एक डर्ट जी है ना वो बाहर क्ड ही दिता, फिर क्ड दिता ना। वैसे भी थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और नाल दे नाल वर्कआउट भी जोड़ा हो ही जाता फिर। देखो देखो देखो, फिर तो थोड़े वेड़े चो पानी पीन आ गए पंछी। वाह जी वाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है ना। सवेरे सवेरे उन्होंने प्यास लगी और थोड़े वेड़े दे विच आ गए और थोड़े वेड़े जाके लग गई रौनकां। तो फिर तुसी फटाफट ट्यून कर लो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ नूं और नाल दे नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी अमृतसर दे स्रोते और न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए। सारे फटाफट जुड़ जाओ क्योंकि निशा

हाँ जी हाँ, यादें यादें यार, यादें ही हैं जिहड़ियां खूबसूरत बनांदियां ने हर एक पल, हर एक चीज़ नूं। हर सवेर अपने नाल एक नवी उम्मीद लै के आउंदी है, एक नवां सुनेहा लै के आउंदी है। भावें कल किवें दा भी बीतिया होवे, अज दा दिन सिर्फ ते सिर्फ मुस्कुराउण दे लई मिलिया। सो मुस्कुराओ, दिल खोल के मुस्कुराओ। बिल्कुल जी, मैं तुहाडे नाल तुहाडी दोस्त निशा, ते तुसीं सुन रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर 102.7 FM ते 103.6 MHz और नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए। ते हुण जिथे हर सवेर जुड़दियां हन गल्लां, भावनावां ते दिल, है सही क्या ना। फिर दोस्तों, जिंदगी भी ना एक सफ़र वर्गी है। हर एक दिन एक नवा स्टेशन लैके आती है, कोई नवा तजर्बा, कोई नवी सिख ते कोई नवी कहानी। इसलिए अज की सवेर की शुरुआत मुस्कुराहट के नाल करते हुए, क्योंकि कई बार ना मुस्कुराहट ही पूरे दिन नू खूबसूरत जड़ा है बना दें है। वल दोस्तों, 9 जून है, इतिहास के पन्नों के अज की खास है, किहड़ियां उह गल्लां ने जिहड़ियां अज के इस पन्नों नू यादां के नाल जोड़ दें, यादां दे उत्ते दर्ज कर दिंदी है जी। अज तो सदियां पहलां दी गल करिए, 1653 दी गल करिए, तां दुनिया दी खूबसूरती दी मिसाल मन्निया जाण वाला ताज महल, आहा जी, ताज महल अपनी पूरी शान दे नाल तैयार होया। यानी कि 9 जून 1653 दे विच ताज महल जिहड़ा है वह पूरी तरह नाल तैयार हो गया सी। करीब 22 साल की मेहनत के नाल बनया ये अद्भुत, जिन्हों असी कह सकते हैं एक स्मारक, अज भी प्यार, समर्पण ते कला का एक बेमिसाल प्रतीक मनिया जाता है। इतिहास के पन्ने, अगले पन्ने नू मैं लिया फरोला, और अगले पन्ने दे उत्ते है कि आज असी महान आदिवासी आज़ादी सेनानी बिरसा मुंडा जी नू भी श्रद्धांजलि भेंट कर दिया। उन्होंने अपने हकां ते अपने लोगों की आवाज़ बन के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिहड़ा संघर्ष किया सी, उन्हां दी जिंदगी सानू सिखाउंदी है कि हौसला ते इरादा किन्ना भी वड्डा बदलाव लिया के सकता है।

लामी थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा 102.7 MHz on Ali or 103.6 MHz on all the news on your app. This is the new program. Good morning, Jalandhar. वैसे गल करिए ना रोड सेफ्टी की ना सड़कां जिहड़ियां ने ना वो सिर्फ मंजिल तक पहुँचाउण दा रस्ता नहीं हुंदियां सगों जिम्मेदारी की भी एक परीक्षा हुंदी है। रोड सेफ्टी असी अक्सर कहने हैं ना यार बस दो मिनट की गल है तो उही दो मिनट कई बार जिंदगी का सब तो वड्डा मोड़ बन जाते हैं। हैलमेट कर रह जाता है, सीट बैल्ट पाउण विच आलस आ जाता है, तो मोबाइल तो एक मैसेज वेखन की जल्दी हो जाती है। पर दोस्तों सड़क पर ना जस्ट 1 सैकेंड की लापरवाही जी है ना बहुत महंगी पै जाती है। असी आखे लगन हटना नहीं, आखे लगना नहीं जिन्होंने कहने असी है ना, कहना मनना नहीं, जस्ट 1 सैकेंड की जी लापरवाही है ना कदे कदे महंगी पै जाती है। एक छोटा जा सवाल, मोबाइल पर आया मैसेज ज़्यादा जरूरी है जा घर उड़ीक रहे अपने लोग? जवाब दियो दियो दियो मैं जरा फटाफट जवाब दियो मैं इस चीज़ का इस गल का। सही जवाब से थोड़ा घर उड़ीक रहे साढ़े परिवार के मैंबर। तो याद रखो घरों निकलन तो पहला हैलमेट जड़ा है जरूर पाना, सिर्फ चलाने तो बचन के लिए नहीं, सिर्फ तो सिर्फ चलाने तो बचन के लिए नहीं पाना, बल्कि इनू जो तुम पाना तो सिर की सुरक्षा के लिए पाना है। सीट बेल्ट की गल करिए ना ये कोई पट्टी नहीं है, जिंदगी की सेफ्टी लाइन है। बिल्कुल जी, जिंदगी की वो सेफ्टी लाइन है। ड्राइव करते समय मोबाइल में भी थोड़ा आराम कर दौ, वह भी कहती होनी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लें दो, मैं सारी रात चलनी, मैं सारा दिन, मैं सारी शाम चलती रहनी हाँ, तो ड्राइव करने के दौरान तो मैं थोड़ा जहा सह ले लें दौ। ट्रैफिक नियम जिहड़े ने कोई रोक टोक नहीं है सगों सुरक्षित सफर की एक गरंटी होंगी है, इसलिए इन्हें ट्रैफिक नियमों की पालना करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। रफ्तार का मज़ा जिहड़ा है ना कुछ पलों का होंगे, जे असी तेज़ चलाने बहुत तेज़ चला के अगे निकल जाने या ओवरटेक करके अगे निकल जाने ना, पर सुरक्षा की पूरी उम्र जी है वो नाल रहती है। गड्डी हौली चलाओ क्योंकि घर कोई तुहाड़ी उटीक कर रहा है, मंजिल ते देर नाल पहुँचना चंगा है पर पहुँचना कदे भी नहीं ए गलत गल है। ताई तो कहनी हाँ कि जो घरों निकलते हैं गड्डी स्टार्ट कर दो, सीट बेल्ट लगा लो, फोन साइड पर रख दो और 102.7 FM ट्यून कर लो है ना। हुण एक गल दसो, जे मोबाइल की बैटरी 2% रह गई होवे तो उन्हों तुरंत असी चार्जर लभन लग पैंदे है ना, पर अपनी सेफ्टी लिए हैलमेट या सीट बेल्ट की अक्सर नज़रअंदाज क्यों कर जाने? ये किहड़ा हिसाब होया भला दस्सियो जरा मैनू है, मतलब कि जे 2% बैटरी रह गई आ फटाफट असी चल जाने कि चार्जर इधर पिया होना, नहीं नहीं उत्ते पिया वो वाले रूम च लगाना, अच्छा नहीं मैं किचन च ही ला लेना है ना। तो जेड़ा हैलमेट है जे वो कि रह जाए और भी वापस आ जाया करो ना, वापस आ जाया करो उन्होंने पाने वास्ते। गलां तो छोटिया छोटिया ने पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमेशा हैलमेट सीट बेल्ट की वरतों करो और स्पीड लिमिट का ख्याल रखो, कुछ एहोजी अल्कोहल चीज़ा पी के ड्राइव करना बिल्कुल अनसेफ, बिल्कुल कुछ भी एहोजी चीज़ों ड्रिंक करने तो बाद तुसी रोड के उत्ते प्लीज़ अपनी ड्राइविंग जिहड़ी है ना करो। मोबाइल के दौरान मतलब ड्राइव के दौरान मोबाइल तो थोड़ी दूरी बना लो, ज़ेबरा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स, इन सारिया चीज़ों का पालन करते हुए जाओ ताकि तुसी एक अच्छे नागरिक बन सको। सड़कां जिहड़ियां ने ना कोई रेस का ट्रैक नहीं होंदियां, जितन वाला ओ जिहड़ा है ना सब तो तेज चले ना कि सब जित जावांगे नहीं, ये सुरक्षित अपने घर पहुँचना होंदा, इसलिए रोड सेफ्टी का भी पूरा पूरा ख्याल रखना बनता है। चक लेना तुसी अपना हेलमेट, सुनी ना मेरी गल ध्यान ना, देखिया मैंने पता लग गया तुसी सुन ली है। बिल्कुल जी, देखिया ना रोहित ने और सुनीता मैम ने ना अपने हेलमेट चक ले ने और पाउण लगे। ला जी मैं क्या शर्मा जी ने भी बेल्ट लगा ली, वाह जी वाह, देखिया इनू कहंदे ने बीबे न्याणे है ना। देखो जी असी खुद नहीं इन्हां चीज़ां नू करांगे तो फिर असी आने वाली पीढ़ी नू किवें सिखावांगे है ना, तो इसलिए जरूरी है कि इन सारिया चीज़ों

0: उसे जरूर फॉलो करिए। सो लेट्स एक गाना हो जाए, तुसी गड्डी स्टार्ट करो और मैं गाना सुना रही हूँ, ठीक है?
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

खेतीबाड़ी मंत्री विचकार एक विशेष गलबात हुई की ए छोटे किसाना औरता आते नौजवाना रही खुराक सुरक्षा ते केंद्रित होगी। 13 जून नो ब्रिक्स देशां दी मुख मंत्री पद्धर दी मीटिंग होगी। खेतीबाड़ी सहयोग अते नवीनता ते एक सांझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा। ओमान दे मस्कट विच भारतीय दूतघर ने पुष्टि की है कि होर्मुज़ पनजोड़ दे दक्षण विच एमटी मैरीवैक्स जहाज विच अग लगन तो बाद 24 भारतीय नागरिकां नूं सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतघर ने ओमान दा तुरंत कार्रवाई लई धन्नवाद भी किया। इस तो पहला बंदरगाहां जहाजरानी अते जलमार्ग मंत्रालय दे बुलारे उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि जहाज विच अग लगन दी सूचना दोपहर बाद 1:30 बजे के करीब मिली सी। शुरुआती जानकारी तो पता चलता है कि सारे भारतीय नाविक सुरक्षित ने। यह पता लाने लई होर जांच की जा रही है कि यह घटना जहाज से हमले कारण हुई सी। ईरान अते इजराइल ने एक दूजे विरुद्ध हमले रोकण दा ऐलान कीता है। ए जानकारी सब तो पहला अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिती। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा सी कि दोवें धिरां तुरंत जंगबंदी अते शांति गलबात वल वध रहीयां ने। हालांकि दोवां देशां ने चेतावनी दिती है कि जेकर जंगबंदी दी उलंघना की जाती है तो यह प्रक्रिया दोबारा विघन पा सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी फौज ने ईरान से हमले रोक दिए ने, पर जेकर ईरान दोबारा हमला करता है तो इजराइल सख्त कार्रवाई करेगा। ईरानी सरकारी मीडिया मुताबिक देश दियां हथियारबंद फौजों ने यह भी कहा कि इजराइल के जवाबी हमले तो बाद उन्होंने अपने हमले रोक दिए ने। एक खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की खुशी में आकाशवाणी जलंधर केंद्र वालों कल शाम KL सैगल ऑडिटोरियम विखे एक शास्त्रीय संगीत प्रोग्राम एक शाम शास्त्रीय संगीत के नाम करवाया गया। इस संगीत प्रोग्राम विच आकाशवाणी के सीनियर कलाकारां वल्लों दिल टुंबवियां पेशकारियां कीतियां गईयां। इस दौरान शास्त्रीय जुगलबंदी पेश की गई जिसकी सारियां वल्लों भरपूर शलाघा की गई। प्योती दी जोड़ी पंडित मनु कुमार सीन अते सुरप्रिया सीन वल्लों पेश की गई शास्त्री सितार संतूर जुगलबंदी नूं मन ना एक सुखद अनुभव सी। पंडित सीन आकाशवाणी के एक जाने पछाने कलाकार ने। उन्होंने नाल तबले ते मधुरेश भट्ट अते सिद्धार्थ चटर्जी ने साथ दिता। दिपिन कुमार ते सतनिंदर सिंह वल्लों एक ख्याल जुगलबंदी पेश की गई। उन्होंने नाल तबले ते पंडित काले राम अते उन्होंने पुत्र पंडित जयदेव ने साथ दिता। पंजाब विच संतूर की पहली अते सब तो घट उम्र की कलाकार अते अपने परिवार की तीजी पीढ़ी की कलाकार सुरप्रिया ने कहा कि पहली बार है जदों उन्होंने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के मंच से अपने पिता जो उन्होंने गुरु भी ने दे नाल पेशकारी दी है। उन्होंने कहा कि वह आकाशवाणी लई पेशकारी दे के अपने आप नूं खुशकिस्मत बंदे ने जो दहाकिया तो राष्ट्र की सेवा करन वाली एक संस्था है। केंद्रीय कोला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल विच भारत के कोला ते खाना के खेतर विच वड्डा बदलाव आया है। हैदराबाद के फिल्म सिटी विखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच उन्होंने कहा कि भारत ने 1 अरब टन कोला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया ते हुण दुनिया का दूजा सब तो वड्डा कोला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोला खेतर तो करीब 5 लाख लोगों नूं सीधे तौर ते अते 25 लाख लोगों नूं सीधे तौर ते रुजगार मिल रहा है। उन्होंने भी कहा कि पिछले 2 सालों में कोले की दरामद में कमी आई है जिस कारण देश को करीब 60,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अमरीका की एक संघी अदालत ने H-1B वीजा अर्जियों से लाई गई $1,00,000 की फीस गैर कानूनी करार दे दिता है। ये फीस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश के तहत तजवीज़ की गई सी। अदालत ने कहा है कि अजिही फीस कांग्रेस की प्रवानगी तो बिना नहीं लाई जा सकती। अमरीका में कई भारतीय अमरीकी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह H-1B वीजा वाले लोगों को राहत प्रदान करेगा और सिस्टम में स्पष्टता बनाई रखेगा। H-1B वीजा अमरीकी कंपनियां नूं दुनिया भर के हुनरमंद पेशेवरां नूं नौकरियां ते रखण दी आग्या दिंदा है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट विच अग लगण नाल 8 लोगों की मौत हो गई है ते 6 होर जख्मी हो गए ने, जिन्हां विचों 2 दी हालत नाजुक है। स्टील मंत्रालय मुताबिक यह हादसा पिघले हुए स्टील की कास्टिंग प्रक्रिया दौरान वापरिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना ते डूंघा दुख

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

हुन त्यसै सुन्ने सि ब्याक टु ब्याक गीत सङ्गीत द प्रोग्राम अड्डी टप्पा एफएम ब्यान्ड 102.7 मेगाहर्ज से आकाशवाणी रेनबो दाई जुरन्दर केन्द्र है 9 बज रहे ने और वेला हो रहा है एफएम न्यूज हेडलाइन्स केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली विच लैंड पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम LPMS की शुरुआत करेंगे अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स खेतीबाड़ी सम्मेलन आज तो मध्य प्रदेश के इंदौर विखे शुरू हो रहा है मस्कट विच भारतीय दूतघर दे होरमुज पणजोर दे दक्षण विच एमटी मैरीवेकस जहाज विच अग लगन दी घटना च 24 भारतीय नाविक नू सुरक्षित होने दी पुष्टि की गई है पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल 355 नौजवानों नू नियुक्ति पत्र सौंपे अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी दे हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश करदिया एक अफगान नागरिक समेत 4 मुलाजमान नू गिरफ्तार किया है पंजाब दे स्थानक सरकार बारे मंत्री हरजोत सिंह मैस ने मिशन क्लीन पंजाब दी शुरुआत की है पंजाब दे खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों सिख्या विभाग दियां 5 जत्थेबंदियां नाल मीटिंगा कहा सरकार गलबात अते सहमति राही मुलाजमा दे मसले हल करन लई वचनबद्ध है आकाशवाणी दे 90 साल पूरे होने की खुशी विच आकाशवाणी जलंधर वालों कल शाम KL सैगल ऑडिटोरियम विखे एक शास्त्रीय संगीत प्रोग्राम एक शाम शास्त्रीय संगीत दे नाम करवाया गया ईरान अते इजराइल ने एक दूजे विरुद्ध हमले रोकने का ऐलान किया अमरीका की एक संघी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वालों H-1B वीजा ਲਈ 1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਨ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ

बिल्कुल जी, दिल से दिल तक 102.7 मेगाहर्ट्ज से एक बार फिर तो निशा सारे श्रोतियों का तहे दिलो स्वागत कर दिया जिन्होंने ट्यून किया है 102.7 मेगाहर्ट्ज 103.6 मेगाहर्ट्ज और नाल दे नाल न्यूज ऑन योर ऐप। इंतजार कर रहे थे कि मेरा हाँ हाँ लग गया पता कर रहे थे इंतजार दिए करिए खत्म कर दें दिल अपना पंजाबी का सिलसिला लेके बिल्कुल निशा तैयार है और तुम भी तैयार हो जाओ मैनू मैसेज करने वास्ते जी। बिल्कुल जी बिल्कुल थोड़े मैसेज जो मेरे को आने चाहिए ने, हाँ बिल्कुल आने चाहिए ने, थोड़े मैसेज मेरे को 9855101027 आने चाहिए ने। ला जी इस नंबर से मैसेज जोड़े है वो आने चाहिए ने। मैं क्या जे थोड़े अंदर कोई खास गल छिपी हुई है जो आस पास कुछ यहोजा सैलीब्रेट किया जा रहा मनाया जा रहा जोड़ा कि साढ़े लिसनर्स भी पता लगना चाहिए है या थोड़े अंदर कोई कला है वह भी तुम भेज सकते हो। बाकी मैं तो नाल गल करती रहूँगी। हाँ जी हाँ कुछ यहोजे गीत सुनावांगी जिहड़ी तुहाडी यादां नूं तरोताज़ा करनगे। प्रोग्राम दे सफर की शुरुआत की सी खूबसूरत तस्वीरां दे नाल, यानी कि तस्वीरां जिहड़ियां ने वो यादां दा एक सुनहरा पल हुंदियां। तुसीं मैनूं ये दस सकदे हो कि अज दसोगे कि गैलरी तो इलावा, यानी फोन की गैलरी तो इलावा और लैपटॉप या थोड़ी कंप्यूटर की मैमरी के विच तुसी स्टोर कीतिया फोटोज़ की गल करोंगे है ना, उस इलावा जिहड़ियां एल्बम्स हुंदियां सी जिहड़ियां असी फोटोआं खिंचदे हुंदे सी ना कैमरे दे नाल जिहदे विच एक रील दे विच 36 to 38 फोटोआं जिहड़ियां खिंचियां जांदियां सी। तुहाडे कोल ओह कैमरा है? नहीं है ना? चल कोई गल नहीं, जे नहीं हैगा तो ओके यार, नहीं हैगा तो लेकिन उदन या एल्बम जिहड़ियां है ना वो सांभ सांभ के रखियां होंगे। वह जो फोटो आदि से ना वो पूरे की पूरी हिस्टरी पूरी की पूरी कहानी जी है ना वह बयान कर देंगे। और जेकर थोड़े को इदा की पुरानी एल्बम्स तुम स्टोर करके रखिया हुई ने, यानी कि फोन की गैलरी तो इलावा जो तुम फोटोज़ स्टोर करके रख्या हो संभाल के रख्या हो जिदे कभी सारे भैन भरा इकट्ठे खड़े होंगे सी, कभी असी अपने दादा दादी नाना नानी नाल ताए चाचियों के नाल यहोजी कोई फोटो खिंचवाई होवे जी थोड़ी बड़ी अच्छी मैमोरी होवे और वह चीज़ तुम मेरे नाल साझी कर सकते घूमन गए होवो उ फोटो खिंचाई होदा चीज़ा जड़ियाँ तुम मैं जरूर साझा करना। और प्रोग्राम जो भी तुम अपना ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजो यहोजी जगह पर भेजना जिसे शोर शराबा ना हो ताकि आवाज़ जी है सारे लिसनर्स तक क्लीयरली पहुँच सके साफ सुथरी, क्योंकि वॉल्यूम तुम थोड़ा आप कर लो क्योंकि प्रोग्राम जोड़ा है ना बहुत सोहने सोहने गाने बजाने वास्ते मेरा बिल्कुल तैयार है। लाओ जी पंजाबियों एक सोहना जहा गाना और उस तुम्हारे कले हुए सुनेहे तो कले हुए मैसेजेस प्रोग्राम की बनने रौनक के प्रोग्राम की बनने शान कर दो अपनी दोस्त निशा में प्रोग्राम के मैसेज 9855101010।

0: बिल्कुल जी बिल्कुल, तुसी मैनू दसना है कि ये आवाज किसी है और ये खूबसूरत आवाज दी मल्लिका कौन है। अगला मैसेज लेंगे प्रोग्राम दे विच, लाओ जी अगला मैसेज लेने है प्रोग्राम दे विच।
1: हेलो दिल अपना पंजाबी, निशा मैडम जी वेरी गुड मॉर्निंग, सारे दोस्तां नूं प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। मैडम जी सवेरे सूरज दी किरणां तों पहले तुसीं आ के रेडियो दे विच ट्यून कर दिओ वंदे मातरम भगती संगीत, इहदे नाल नाल लहरां उठांदे उठांदे तुसीं अपनियां गल्लां बातां दीआं, जिस तरह की गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच तुसी पूरी जानकारी दित्ती सानू पुरानियां फोटो बारे, सानू कहा कि तुसी अपनी यादां जोड़ के रखियां अपनी नानी दादी नाल मामियां मासियां दे नाल, अज दा तुहाडा टॉपिक भी यही है मैडम जी, ते नाल स्प्राउट दी चाट अंकुरित जिस तरह दालां वगैरा आपां अंकुरित करदे हां उहनां दी चाट रोल चिल्ले बारे भी जानकारी दिंदे होए तुसी साडी डॉक्टर स्वाती मेहता जी दे नाल गल बात करवाई आर्थिक व्यवस्था बारे। मैडम जी ये सारियां जानकारियां लेंदे होए 90 साल हो गए साडे ऑल इंडिया रेडियो नूं आकाशवाणी नूं, उहदे उपर इक शाम शास्त्रीय संगीत दे नाम एक गल ज्योति प्रज्वलित की गई ते नाल शास्त्रीय संगीत दे नाल सब नूं जोड़ के बड़ा आनंदित किया गया मैडम जी, ते फिर तुसी सानूं सारियां गल्लां दसते होए एक रुख 100 बीमारियां ते सानूं ऑक्सीजन बहुत ज्यादा दिंदे हन, रुखां दी पहचान करके रुखां नूं सोहणे तरीके नाल रखो, उहनां नूं पानी दिओ, जीव जंतुआं नूं पानी दिओ, पशु पक्षियां वास्ते सारा अरेंजमेंट रखो पानी दा
0: जी।
1: गर्मी बहुत हैगी है, कल मैनूं कार्यावंश घरों बाहर जाना पै गया ते मैडम जी वक्के गर्मी ते सूरज ते धरती इक सी, इन्नी गर्मी सी मैडम जी, ते अज मैं बनाया पोहा, जदों तुसीं सानूं सारा प्रोग्राम सुना रहे सी ते मैं पोहे दी तैयारी कर रही सी, मैं पोहा बनाया है ते अपनी निशा मैडम जी नूं टेस्ट वास्ते भेजा है, दसो किदां दा बनिया है, नाल एक गरम गरम कप चाह दा है, खा के मैनूं पूरा बयान करो किदां दा बनिया है, ते मैं तुहाडी अपनी किरण नरूला ग्रीन पार्क कपूरथला तों।
0: बिल्कुल जी, इन्हां दा पोहा जिहड़ा है मेरे कोल पहुंचिया है, लुक वाइज बहुत अच्छा है और चाह दी प्याली और नाल दे नाल पूरा दा पूरा पोहा यम्मी, और इन्हां दी किचन दे विच ना 102.7 FM जिहड़ा है ना वो ट्यून है, और रेडियो दी फोटो दस रही है कि दिल से दिल तक दा कनैक्शन वाकई बड़ा स्ट्रोंग है, और ये स्ट्रोंग कनैक्शन जिहड़ा है इसे तरह बरकरार रहना चाहिए ना, एक गाना हो जावे फिर
2: सौंक लोटा तित्तर मोटा चल मदारी पैसा खोटा।

हाँ जी, हुन थोड़ा ज़्यादा सुनिया, हुन गैस करने की कोशिश की थी, सही सही नाल, सही सही नाल पकड़े हो कि ये गाना की दी आवाज़ या की दी आवाज़ हो सकता है। ओके, सो चलो कोई गल नहीं, जो तुसी नहीं गैस कर पाए तो मैं दस दिनी हूँ। इस सवाल का जवाब बिल्कुल आया है, बिल्कुल जी, आशा भोसले की आवाज़ है। और इस सवाल का जवाब साढ़े एक दोस्त ने जिहड़े दिता है, मिर्ज़ापुर सैक्टर तो यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान और सारा धीमान परिवार। दो गुत्तां कर मेरियां, बिल्कुल आशा भोसले की आवाज़ ही खूबसूरत गीत जिहड़ा तुसी सुन रहे हो। वैसे तुहानूं अज दा सिलसिला जिहड़ा ना किहो जिहा लगा जरूर दसना। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किए, बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब भी दिता, और जिन्हां दोस्तों ने सही जवाब दिता ना, मैं उन्होंने कहा सीगा कि मैं उन्होंने ना ओ वाला गाना, ओ ही वाला गाना जिहड़ा कि तुसीं गैस का सही जवाब दिता मैं जरूर जरूर देंगी। और मेरे को मैसेज जिहड़ा है ये साडे कोल आया है शमशाद बेगम की आवाज़ में है, दो गुत्तां कर मेरियां, जम्मू कश्मीर जिला जम्मू तो साडे कोल खड़ा बली पिंड सी यूनी तो मैसेज है। नहीं जी नहीं, जवाब हूँ मैं दे दिता जे कि तुसी बिल्कुल कोशिश जड़ी है बिल्कुल सही की थी सी इस गीत नू पहचानन दी, इस गीत तक पहुँचन दी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मैनू जवाब जड़ा है ऑलमोस्ट सही सही पहुँच चुका है, दो गुत्तां कर मेरियां। सो घड़ी दी सुई जड़ी है ना वो अपनी रफ्तार दे नाल टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक करके अगे जा रही है। टिकटॉक टिकटॉक जिवें घड़ी चलती है उ प्रोग्राम चलता है, और तुहाडे मैसेजेस जिहड़े मेरे को आते हैं, तुहाडे कल्ले हुए मैसेजेस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहनी हाँ, क्योंकि तुसी इन्ने अच्छे अच्छे मैसेज कड्डे जिहड़े है मैनू भेजे ने, और उन्होंने मैसेजेस दे विचों गल करा ना तो हर मैसेज का कोई ना कोई मीनिंग जिहड़ा जरूर हुंदा जो तुसी कल्दे हो जो तुसी भेजदे हो, बहुत चंगा लगता है। और मैं तस्वीरां दी गल कीती सी तो मेरे दोस्तों ने अज तस्वीरां दी गल तां कीती नहीं, चलो कोई गल नहीं, मैं इस वेले इत्थे गल कीती है, लेकिन तुसी अपने घर दे विहड़े दे विच बह के ना अपना संदूक अपना ट्रंक जिहड़ा खोल के उन्हें एल्बम्स नूं कढ़ के देखना जिहदे विच 36 रीलां वाली फोटो हुंदी सी ना, वह फोटो देख के वाह जी पूरी पूरी हिस्टरी जिहड़ी है ना जहन दे विच आ जाएगी कि इस फोटो नूं खिंचण लई पहलां सज्जे खड़े होण नूं क्या सी, फिर खब्बे खड़े होण नूं क्या सी, फिर इधर जाण नूं क्या सी, फिर उधर जाण नूं क्या सीगा, मतलब कि वह पूरा दा पूरा जिहड़ा एपिक बैकग्राउंड स्टोरी है ना वह भी याद आ जाएगी और चेहरे दे उत्ते मुस्कुराहट आ जाएगी। सो मेरा अज दा यही मकसद सी कि मेरे जिन्ने भी लिसनर्स ने मेरे जिन्ने भी दोस्त ने सारे चेहरे देते एक प्यारी जी मुस्कुराहट आ जाए। सो मेरा ये मकसद शायद तो पूरा हो गया, फिर जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक अपना रखना ख्याल, तुसी दिता सी जिन्होंने सही जवाब उन्हां दा तहे दिलो धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं फिर थोड़े नाल दिल से दिल तक, तो फिर सुनो सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर की आवाज़ रसिया नींबू लिया देवे।

हाँ जी, की हाल चाल ने जनाब। आई होप तुसी सारे अपनी अपनी जगह ठीक होवोगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी ते प्रोग्राम लेके आ चुकी हूँ वो जिदा थानू सारिया नू बेसब्री नाल इंतजार रहिंदा है जी। गीत बहार। गर्मी की गल करिए इस टाइम जड़ा है टैंपरेचर 42 डिग्री हो चुका है, तो दोपहर तक कितने तक जाएगा कुछ कह नहीं सकते। गर्मी जड़ी है इस टाइम कह सकते हैं कि अपने पूरे दे पूरे शबाब ते है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इस गर्मी के मौसम के हर एक का दिल करता है कि किसी हिल स्टेशन ते खूबसूरत जी वादियाँ ते घूमन फिरन जाया जाए। बच्चों तो छुट्टियां पै गई हैं, बट पेरेंट्स नू कई बार ऐसा होता ऑफिस तो छुट्टी नहीं मिल पाती या काम कार करके कई बार घूमन फिरन का प्रोग्राम नहीं बन पाता, तो उदास बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि 102.7 FM रेनबो अज गीत बहार दे विच असी ओही वाले गाने प्ले करांगे जो कि तुहानू लै जाणगे खूबसूरत वादियां दे विच, पहाड़ां दे विच, ते जिन्हां गाणियां दे विच खूबसूरत नज़ारे भी ने। फिर इस खूबसूरत जे सफर दे लई तैयार हो जाओ, तो इन्हां गाणियां दी शुरुआत कीती जाए तो बॉलीवुड का सब तो पहला गाना इलाही, जो कि मूवी ये जवानी है दीवानी तो याद आता है। मतलब दुनिया देखन दा, सफर करन दा, निकलन ते जदों दिल कर पाता है ना, तो यह गाना जिहड़ा हमेशा जहन दे विच रहिंदा है। चलो फिर शुरुआत करते हैं इस गीत दे नाल, ते इदां ही ट्यून इन करके रखो जी खूबसूरत जे गाणियां वास्ते, ते अज ठंडी ठंडी हवावां दे विच घूमन वास्ते 102.7 FM रेनबो विद आरजे साक्षी प्रोग्राम गीत बहार।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

Once again, welcome back है जी ट्यूनिंग के तहत 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है जी गीत बहार ते मैं हाँ जी तुहाड़ी अपनी साक्षी तुहाड़े नाल गीत बहार दे विच अज गीत ओ वाले प्ले किते जा रहे ने प्लेलिस्ट दे विच ओ वाले गीत ऐड किते ने जिन्हां दे विच असी खूबसूरत वादियां खूबसूरत कुदरती नज़ारियां नूं जिहड़ा हैगा अज इंजॉय कर पा रहे मतलब तुसी घूमन फिरन नहीं जा सके तो उदास नहीं होना अज घुमान फिरान दी जिम्मेवारी जिहड़ी है ना इस खास प्रोग्राम दे विच असी तुहानूं लैके जा रहे हां उन्हां खूबसूरत डेस्टिनेशनस दे विच ते अगले गाने की गल की जाए तो हिमाचल की पहाड़ियाँ जड़िया ने इस गीत दे विच ने ते उन्हां नूं देख के बहुत ही सुकून भी मिलता हिमाचल की पहाड़ियों के गूंजता है गाना अज भी हर एक जिहड़ा म्यूजिक लवर हैगा वो प्लेलिस्ट दे विच अपनी जगह जिहड़ी है बना के बैठा हुआ है और इस गाने दे विच करीना कपूर खान दे क्या एक्सप्रेशन सीगे मतलब इन्ने वधिया लग रही सी ओ ते नाल ही नाल इस मूवी दे विच उन्हां दे एक्टिंग स्किल्स भी जड़े ने ऑडियंस वालों बहुत ज़्यादा पसंद किए गए सी गाना है जी फ्रॉम द मूवी जब वी मेट ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए सो बैठे बिठाए अज असीं भी जन्नत दी सैर करदे हां इस गाने दे राही आवाज़ है श्रेया घोषाल दी

बिल्कुल जी, ऐसे भी संग संग चल रहे हैं इस खूबसूरत जय सफर दे विच। ट्यून इन कीता होया तुसी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है जी गीत बहार, ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल। ते अज गीत बहार दे विच सैर हो रही है खूबसूरत वादियां दी, खूबसूरत पहाड़ां दी, ते मैं कहा जी वधिया वधिया कुदरती नज़ारियां दी। नेक्स्ट सॉन्ग जो है पहाड़ों की खुली फिजाओं में खुद को महसूस करने वाला और सपनों को पंख देने वाला है। गाना है फ्रॉम द मूवी रॉक स्टार, जो गाया है मोहित चौहान ने। आर्या जी तो हाड़े रेडियो सेट पे।

अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स खेतीबाड़ी सम्मेलन आज तो मध्य प्रदेश के इंदौर विखे शुरू हो रहा है। मस्कट विच भारतीय दूतघर दे हरमोज पंजोड़ दे दक्खन विच एमटी मैरीवैक्स जहाज विच अग लगन दी घटना च 24 भारतीय नाविका दे सुरक्षित होण दी पुष्टि की गई है। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने कल 355 नौजवानों नू नियुक्ति पत्र सौंपे। अमृतसर कमिशन रेड पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी अते हवाला नेटवर्क दा पर्दाफाश करदियां एक अफगान नागरिक समेत 4 मुलजमां नू गिरफ्तार किया। पंजाब दे स्थानक सरकारा बारे मंत्री हरजोत सिंह बैस ने मिशन क्लीन पंजाब दी शुरुआत कीती। पंजाब दे खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा वल्लों सिख्या विभाग दियां 5 जत्थेबंदियां नाल मीटिंग, कहा सरकार गलबात अते सहमति राही मुलाजमा दे मसले हल करन लई वचनबद्ध दे। आकाशवाणी दे 90 साल पूरे होण ते खुशी विच आकाशवाणी जलंधर केंद्र वल्लों कल शाम KL सहगल ऑडिटोरियम विच एक शास्त्रीय संगीत प्रोग्राम एक शाम शास्त्रीय संगीत दे नाम कराया गया। ईरान अते इजराइल ने एक दूजे विरुद्ध हमले रोकण दा ऐलान कीता। अमरीका दे एक संघी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वल्लों H-1B वीजा लई $1,00,000 अमरीकी डॉलर दी फीस लाउण ते तजवीज नू रद्द कर दिता है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनां लई पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच लू चलन दी पेशी नगोई कीती। मर्दां दे क्रिकेट विच अज भारत ए अते श्रीलंका ए विचकार एक रोजा त्रिकोणी लड़ी दा पहला मैच श्रीलंका च खेडिया जावेगा। एसन हुन तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसी सुन रहे हो 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम होम स्वीट होम दी शुरुआत हो गई है जी। ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी होम स्वीट होम ओ प्रोग्राम जिदे विच हर रोज़ असी तुहाडे लिए लैके आने हैं घर परिवार सेहत ते स्किन दे नाल रिलेटेड, मतलब तुहाडी स्किन नू इनहांस करन वास्ते बहुत सारे ब्यूटी टिप्स जो कि बहुत ही फायदेमंद होंदे ने। इस खास प्रोग्राम दे विच असीं हर रोज़ मतलब बहुत सारे हेल्थ टिप्स लेके आने हैं, जानते हैं कुछ आसान फायदेमंद नुस्खे जो कि अजमाए होंदे ने साड़ी दादी नानियां वल्लों, जो कि पीढ़ियां तो साड़ी जिंदगी दा हिस्सा बने हुए ने। ते आज भी इस खास प्रोग्राम दे विच बहुत सारियां गल्लां ने जो तुहाडे नाल करनियां ने, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो तुहाडे नाल शेयर करनी है। सो थोड़ा ते साड़ा साथ जिहड़ा है इदां ही बनिया रहेगा। ते हर बार प्रोग्राम दी शुरुआत दे विच असी एक होर गल कहने हैं कि अपने कोल पेपर पेन जिहड़ा है जरूर लेके बैठो इस खास प्रोग्राम दे विच, ताकि जिहड़ियां भी खास खास टिप्स ट्रिक्स जिहड़ियां ने असी तुहाडे नाल शेयर करिए ताकि वो तुसी पेन डाउन कर सको। नाल ही नाल प्रोग्राम दे विच गल होएगी अज एक क्रोशिया आर्टिस्ट दे नाल, ते उस तो बाद एक खास फूड रेसिपी जां फिर ड्रिंक जिहड़ी है ड्रिंक दी रेसिपी कोई खास तुहाडे नाल शेयर करांगे जो कि इस गर्मी दे मौसम दे विच साडे पेट नूं ठंडा ठंडा रखेगी। सो बने रहो मेरे यानी कि साक्षी दे नाल, ते ट्यून इन करके रखो 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम होम स्वीट होम चल रहा है जी।

ना इशारे नी लगे अखियां ते गड़ी करी ना इशारे नी हाय तेनू तकियां लोकां नू गश पंदे

0: जाके ना नु सेल भी कर सकते हैं।
1: पहला स्टार्टिंग से तो मैं एज अ हॉबी ले रही सी इनू कि मैं बस अपने लिए ही चीजा बना रही हाँ, पर जो मैं रोज ये चीज करने लग गई तो फिर मेरे ब्रदर ने कहा कि मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे तेनू ये चीज पानिया चाहिए वा ताकि होर भी जाने देखन इनू, क्योंकि हैंडमेड चीज का अलग ही तुम दिखेगी वो चीज, वो तुम हर कोई नहीं बना के दे सकता। ते इदा ही फिर लोगों को इंटरेस्ट आया देखने च, तां हुण हौली हौली वध गया है।
0: ठीक है जी। ते हुण तक जे गल करिए प्रियंका, किस तरह दे ते किन्नी क आर्टिकल्स तुसी बना चुके हो?
1: मैं तो काफी चीजा बना चुकी हाँ, मेरे 250 तो उतनी चीजा हो गई होनी है जो मैं अलग अलग चीजा बना चुकी होगी।
0: अच्छा जी, ते केड़ियां केड़ियां चीजां ने?
1: हैंडमेड जिदा हुण बैग्स हो गए, हेयर एक्सेसरीज हो गया, जिदा अपने जिदा शंकर जी हैगे आ, कृष्णा जी हैगे आ,
0: जी जी
1: माता
0: जी
1: जी आ, इदा इदा दी चीजा, जिदा डॉल्स भी हैगे वा, ये चीजा सारियां, इयररिंग्स वगैरह हो गए।
0: अच्छा जी, चाहे की चेन्स होन, चाहे
1: हाँ
0: सॉफ्ट
1: जी
0: टॉयज होन, चाहे
1: हाँ जी हाँ जी
0: हैंड बैग्स होन। जी जी जी
1: हाँ
0: जी
1: जी हाँ जी हाँ जी
0: ते ना चीजां दे विच सब तो ज्यादा खास है भी चीज है कि ये सारियां चीजां ने साडे एनवायरनमेंट वास्ते भी बहुत वधिया ने, इको फ्रेंडली भी ने, है ना।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
0: ते जिवें एक चीज बना ली तुसी ते उस तो बाद लगा कि आर्टिकल जेड़ा है सेल नहीं हो रहा या किसी नु पसंद नहीं आ रहा, ते वो चीजा दोबारा भी रिक्रिएट हो जांदी है या मॉडिफिकेशन हो जांदी उन्ना किसी तरीके दी?
1: वैसे तो मेरिया हो जाएं सारिया चीजा सेल, क्योंकि मैं
0: अच्छा
1: इधर
0: जी
1: दी
0: जी
1: रख दी इधर दी क्यूट चीजा रख दी ताकि लोगों को पसंद आ जाए।
0: जी जी जी जी
1: हाँ जी
0: ते असीं भी तुहाडे पेज देखे, उत्थे बहुत ही खूबसूरत जिहा चीजां ने, बहुत ही क्यूट है सच्ची जी, सारे दे सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे ने।
1: थैंक यू।
0: ते इन्ना मास्टरपीस नु बनाउण दे लई किन्ना कु टाइम तुहानू लगदा है?
1: डिपेंड करता है कि कोई चीज छोटी मोटी है तो फिर वो जल्दी बन जाएगी, जा जे वड्डी चीज है फिर ओनू कई दिन लग जांदे है। हां
0: अच्छा जी,
1: जी
0: ते कुछ आइडिया वगैरह दिमाग च किदा क्लिक हुंदा है जदों कोई ऐदा दी चीज देखने आ कि क्रोशिया तो पहला नहीं बनाई गई? तुहाड़े दिमाग च प्रोसेस किदा चलदा है कि यह चीज मैं ऐदा बनावांगी या कुछ?
1: इदा हुण कोई वीडियो देख ली या कोई फोटो देख ली ओदी, जां किसे ने कह दिता कि हाँ सानू इदे विच क्रोशिए च ये चीज चाहिदी है, कोई सॉफ्ट टॉय आ ओ सानू क्रोशिए दे विच चाहिदा, तो फिर ओ चीज फिर उदा शुरू कर दी दी कि हाँ इदा ये चीज इदा बनानी है।
0: जी, ते हुण भी अपने मदर दे विच विच गाइडेंस या हेल्प दी नीड पैंदी है तुहानू? अच्छा
1: नहीं हुण तां नहीं पैंदी, हुण मैं मम्मी नूं दसदी हाँ हुण मम्मी तो ज्यादा मेनू पता लग गया होया इस चीज का।
0: अच्छा, मतलब हुण है तुहाडा शौक है कि इहनू प्रॉपरली तुसी प्रोफेशन ही बना लिया अपना?
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल प्रोफेशनल बना लिया होया इन्हें मैं अपना।
0: अच्छा जी, ते जे ऑर्डर्स दी गल करिए तां वर्ल्ड वाइड तुहानू ऑर्डर आंदे ने, इंडिया तो बाहर दे भी ऑर्डर्स आंदे ने?
1: हाँ जी हाँ जी बाहर दे भी है, जिदा कनाडा वगैरह दे भी आए सी मेनू ऑर्डर, ब्लैंकेट्स वगैरह बना के भेजिया सी मैं इन्हां नू।
0: अच्छा जी, मतलब इन्ने इन्ने वड्डे वड्डे प्रोजेक्ट्स भी तुसी तैयार करते हो,
1: हाँ जी
0: ब्लैंकेट्स
1: हाँ जी
0: तक भी?
1: हाँ जी हाँ जी
0: ठीक
1: पर
0: है
1: उन्होंने
0: फिर।
1: फिर टाइम ज्यादा लगता
0: जी जी जी जी ते एक चीज असीं अक्सर पढ़ते भी हाँ या सुनना चाहता है कि जदों हैंडमेड चीजा असीं बनाने हैं या सानू किसी चीजा दे अद्दा दा शौक होवे, ते जे साडी बॉडी च भी किसी तरह दा स्ट्रेस हैगा तो चीजा तो असीं कट ऑफ हो जाने हैं जदों आपां निटिंग या फिर क्रोशिया कर रहे हैं या स्टिचिंग कर रहे हैं या एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। यह चीज किन्नी कु सच है प्रियंका?
1: बिल्कुल सच है, 100% सच है ये चीज, क्योंकि मैं बहुत ओवर थिंक कर दी सी ते
0: अच्छा
1: इस चीज नाल मेरी वो चीज बंद हो गई है, कोई
0: जी जी
1: स्ट्रेस
0: जी
1: नहीं हैगा इस चीज से कि हाँ भी कोई उदा, बाकी चीजा तुसी भूल जूंगे जे तुसी चीज है कर रहे, जरूरी नहीं सिर्फ क्रोशिया ही करना होवे,
0: जी जी
1: बाकी
0: जी
1: चीजा भी हर किसी च कोई ना कोई टैलेंट हुंदा, वो अपना
0: बिल्कुल
1: टैलेंट लभना हुंदा बस, ते वो तुसी शुरू कर दो तो उसका सब बंद हो जाएगा, ओवर थिंकिंग स्ट्रेस सब कुछ हट जाएगा।
0: ते तुहाडे फ्रेंड्स का किन्ना दा रिएक्शन हुंदा है जियां फर्स्ट टाइम जब उन्होंने सुनिया कि तुसी ये चीज स्टार्ट कीती है, तुहाडे नाल होर भी किसी ने ऐदा दा शौक पिया नाल तुहाडे फ्रेंड्स नु?
1: फिलहाल थोड़ा बहुत पिया सीगा बाकी कंटिन्यू नहीं हैगा उन्होंने तो।
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: ठीक है। ते पेशेंस किन्ने कु चाहिए हुंदे जदों तुसी क्रोशिया कर रहे हो, या केड़ी टेक्निक्स ने या केड़ियां चीजां ने, जे कोई क्रोशिया कर रहा है ते वो भी वक्रियां वक्रियां चीजां बनाना चाह रहा है ते अज प्रियंका नु सुन रहा है, ते तुसी की उन्हां नु थोड़ा गुरु मंत्र कह लो अपना देना चाहोगे?
1: पेशेंस तो ये विच बहुत चाहिए है, जरूर जे गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें तो थोड़ी देर रुक जाओ, नहीं तो
0: अच्छा
1: ये चीज तो नहीं बना पाओगे, पेशेंस तो बहुत चाहिए है ये विच, मेरे च पेशेंस नहीं सी हुंदा पहला, हुण मेरे च बहुत है इस चीज नु करदी करदी नु, ते ये चीज

वंस अगेन वेलकम बैक है जी, प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम। ट्यून इन किया है तुसी 102.7 FM रेनबो ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल। गर्मी जड़ी है बहुत ज़्यादा वध रही है ते आज दे टेंपरेचर दे भी गल करिए ते इस टाइम 43 हो चुका है। प्यास जड़ी है बार बार लगती है, दिल करता कुछ ना कुछ ठंडी ड्रिंक्स जड़िया ने असी पींदे रहिए, पर जड़िया ड्रिंक्स ने मतलब असी पी रहे हैं वो नाल नाल साडे सेहत लिए भी चंगियां होनी चाहीदियां, ऐ भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैगा ताकि सानू उन्हां तो मतलब साडी बॉडी जड़ी हैगी डीहाइड्रेट ना होवे उन्हां नू पीन तो बाद। सो पीन वाली ड्रिंक्स की गल करिए सत्तू जड़ा ना इस गर्मी के मौसम दे विच बहुत वधिया है ते आज सत्तू दा नमकीन शरबत असी घर दे विच किवें तैयार कर सकते हैं ओही खास रेसिपी जड़ी हैगी है तुहाडे लई लेके आई हां। एक गिलास सत्तू दा शरबत बनाने वास्ते सानू की चाहिए है, सब तो पहला तो दो वड्डे चम्मच जड़े हैगे ने सत्तू चाहिए, उस तो बाद एक गिलास ठंडा पानी लगभग 250 to 300 ml ते नाल ही नाल नींबू दा रस एक वड्डा चम्मच, काला नमक अद्धा छोटा चम्मच ते भुनिया होया जीरा पाउडर अद्धा छोटा चम्मच ते नाल ही नाल नमक जिहड़ा है स्वाद अनुसार तुसी इहदे विच सेंधा नमक या फिर काला नमक अपनी चॉइस दे नाल कोई भी यूज़ कर सकते हो। इहदे नाल ही नाल हरी मिर्च चाहीदी है जी एक बरीक कटी हुई ते नाल ही बरीक कटिया होया प्याज चाहीदा है, पुदीना ते हरे धनिए दे पत्ते होण तां बहुत ही वधिया बरीक बरीक कटे होए ते नाल ही बर्फ़ दे टुकड़े 3 to 4। सत्तू दा शरबत बनाने वास्ते की चाहिए है जिहड़ी समग्री हैगी है इनग्रीडियंट्स जिहड़े ने एक बार फिर तो शेयर कर देनी आ तुहाडे नाल। दो वड्डे चम्मच सत्तू दे चाहिए ने, एक गिलास सत्तू दा नमकीन शरबत बनाने वास्ते, इहदे नाल ही नाल ठंडा पानी चाहिए है एक गिलास लगभग 250 to 300 ml, नींबू दा रस चाहिए एक वड्डा चम्मच, काला नमक अद्धा चम्मच, छोटा चम्मच भुनिया होया जीरा अद्धा छोटा चम्मच ते नाल ही नाल नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च बरीक कटी हुई ते बरीक कटिया होया प्याज, इहदे नाल ही नाल पुदीना ते हरे धनिए दी पत्तियां बरीक बरीक कटियां होईयां ते बर्फ़ दे टुकड़े 3 to 4। हुण इहनू बनाउण वास्ते आपां की करना, एक वड्डे

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब ते गुड आफ्टरनून दोस्तों। 102 शरसत में कहा तुसी ट्यून इन किया होया है। इस वक्त स्टूडियो दी कड़ी दे मुताबिक दोपहर दे 2:30 हो चुके ने ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है दिल आज शायर है। So, प्रोग्राम दिल आज शायर है, तुसी इंजॉय करोगे अपने दोस्त मोहित रूबल दे नाल ते बहुत सारियां गल्लां करांगे आज असी इस प्रोग्राम दे विच। ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, ये आंसू ढूंढता है तेरा दामन, मुसाफिर अपनी मंजिल जानता है। सो मैं तां शुरुआत कर ही दित्ती है पोइट्री दे नाल, एक छोटी जी कविता दे नाल, बाकी तुसी भी फटाफट प्रोग्राम दे विच शामिल होना है। एंड मैं पहला ही दस दवां कि प्रोग्राम जेड़ा है ओ अद्धा घंटे दा होवेगा, क्योंकि 2:30 ते तुसी सुनोगे साडा स्पोंसर प्रोग्राम उमंग

जो कि एनसीईआरटी स्पेशल स्पॉन्सर प्रोग्राम है। सो आधे घंटे दे विच तुसी फटाफट सानू अपनिया शायरीज कवितावां पोएट्रीज जो भी तुसी कहंदे हो वो तुसी सानू भेजना है तां जो असी प्रोग्राम दे विच जो खूबसूरत तुहाडे वल्लों भेजियां गईयां जो लिखता है उन्हां नूं असी शामिल कर सकीए। सो जिवें कि तुसी सारे जानदे हो कि बई जिहड़े सानू दोस्त भेजदे ने उन्हां नूं बस इक्को गुजारिश है कि बई जो तुसी भेजदे हो जो ओरिजिनल राइटर है तुसी उन्हां दा नाम जरूर नाल मैनशन करना है। ठीक है जी, आओ एंजॉय करते हैं प्रोग्राम का पहला गीत फ्रॉम द मूवी तनु वर्ड्स मनु।

जी खूबसूरत गीत बाद एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच समा हो चुका है दोपहर दे दो बज के ऑलमोस्ट छे मिनट सो प्यारे दोस्त जिहड़े ने वो अपना काम भी कर रहे ने बेशक ते नालो नाल सानू प्यार भरियां जिहड़ियां शायरीज ने वह भी सानू भेज रहे ने जिवें सानू मैसेज आया है पहला तो इन्होंने सानू ना एक सीधा लिंक भेज दिता किसी अगों जिथे इन्होंने शायरी लभी होएगी लिखा कि हर कोई मुहब्बत में फना नहीं होता हर कोई मुहब्बत में फना नहीं होता किसी को चाहना कोई

गुनाह नहीं होता। वह पूछती है कि तुम कितना चाहते हो मुझे, वह पूछती है कि तुम कितना चाहते हो मुझे, वह पगली क्या जाने, प्यार लफ्जों में बयान नहीं होता। क्या बात है। ऐसा नू पिजय राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चिलियां सुल्तानपुर लोधी तो लिखे। नमस्कार सर, मोहित रूबल आफ्टर वेरी लॉन्ग एंड स्वीट मेमोरेबल वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच। तो एक होर इन्होंने भेजे वह भी रीड कर लें जी। लिखे कि तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी, तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी कि मुझको रखने पड़े अपने कान कागज पर। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और सानू भेजा यासिर खान इनाम जी ने, मतलब उन्होंने तो लिखा हुआ भेजा तो राम सुर गरोड़ा जी नहीं है। सो बहुत प्यारा जी, बहुत प्यारा। एक होर मैसेज असी रीड कर लैने। लिखा कि माली का हक फुलां तक ही है, माली का हक फुलां तक ही है, खुशबू उस दियां पाबंदियां तो बाहर होंदी है। अरे वाह, भेजे मैसेज सानू प्रेम मार्केट बठिंडा अमरजीत जसल उर्फ चूची। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सानू मैसेज भेजने के लिए। तो चलो अगला एक गीत इंजॉय करते हैं। गीत तो बाद होरां दोस्तों के मैसेज भी शामिल करांगे। अगला गीत मेरा वन ऑफ फेवरेट गीत।

जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी दिल में कोई फरियाद है जो शायद दबी है, जिसको आप शायद बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं अभी तक, चलो आज निकाल ही दीजिए। जी हाँ, उठाइए अपना फोन और हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए क्या कहना चाहते हैं। पर हाँ, वो जो भेजोगे वो थोड़ा सा राइमिंग में हो, थोड़ा शायरी के अंदाज में हो जाए तो क्या बात है फिर। तो भेजा है किसी ने हमें कुछ ऐसा ही, लिखा है लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी ने भेजा है कि दिल विच तुहाडी एक गल रहेगी, दिल विच तुहाडी एक गल रहेगी, जगह घट है पर आबाद रहेगी, कि चाहे भुला दिए इस जमाने नू, चाहे भुला दिए इस जमाने नू, प्यारी दोस्ती सानू हमेशा याद रहेगी। दोस्त ने ना लिखिया काफी कुछ, मतलब पंजाबी हिंदी रीमिक्स ही कर देती है, पर फिर भी सोना लिखा, कोशिश कर दे रो। अगला मैसेज है, सत श्री अकाल दिल शायर है दे विच मोहित रुबल जी, बरविंदर सरा पिंड मोरजन सिखा हनुमानगढ़, कि तेरी यादों में खोए रहकर इस दुनिया से दूरी लगती है, तेरी यादों में खोए रहकर इस दुनिया में दूरी लगती है, हो सके तो प्लीज मेरे पास लौट कर आ जा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। क्या बात है जी, बहुत सोना बहुत सोना। अगे एक और मैसेज आया, लिखा है कि वक्त ने बहुत कुछ सिखाया, वक्त ने बहुत कुछ सिखाया पर वक्त पर नहीं सिखाया। बहुत दूंगा बहुत दूंगा। कि वक्त ने बहुत कुछ सिखाया पर वक्त पर नहीं सिखाया, किताबों से ज्यादा जिंदगी ने सिखाया, गलतियों ने हुनर सिखाया, राह में सबक बहुत मिले, राह में सबक बहुत मिले, लोग बदल गए चेहरे भी बदले, हर ठोकर ने सिखाया, जिंदगी ने समझदार बनाया, एक शुक्रिया जिंदगी का, हजार मुश्किलें आई पर शुक्र है हमें इंसान बने रहना ही रास आया। ऐ कित्थों दी गल शुरू हो के किथे फिलोसफी तो लैके किथे स्पिरिचुअलिटी दे बल पहुंच गए। चलो गुड आफ्टरनून रोहबिल रूबल मोहित सर जी, कुलविंदर टेलर वीपीओ कंडोला नियर आदमपुर। गुड आफ्टरनून जी कुलविंदर जी, की हाल चाल, ठीक ठाक हो? चलो हुण असीं अगे वधदे हां। अगे बड़ा खूबसूरत गीत इंतजार कर रहा है रिचा चड्डा ते राहत फतेह अली खान दी आवाज़ दे विच, आओ इंजॉय करदे हां।

जो जग है वो सूना सूना सरी लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत सारी पै रही है। तो गर्मी इतनी सारी पै रही जब होती है तो जग क्या बंदे की बाल्टियां भी सूनी पड़ जाती है, क्योंकि पानी जो है वो धुप जो है गर्मी हुआ है वो सोख लेती है। अच्छा, दूसरे जग की बात हो रही थी। एंजॉय करे प्रोग्राम। दिलाज शायर है अपने दोस्त मोहित रुबल के साथ। समा हो चुका है दोपहर के 2:21:24। आई नो दोपहर वाली वाइब है एंड तुसी थोड़े काफी लेजी जे इस टाइम होए होवोगे शायद। मैं थोन विच विच लस्सी जी पला गया ना, तो मैं बिल्कुल ताजा करी जाना, ठीक है। बट तुसी बस मेनू होश तुसी दिलाई जानी है, मेनू प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज के, प्यारी प्यारियां शायरीज भेज के। आगे मैसेज है, FM दिलाज शायर है, RJ मोहित रुबल सर जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आज बहुत दिनों बाद आए हो, वेलकम। साजन जी घर आए, मतलब मुझे लगता कि मेरे बैकग्राउंड से इदा दा गाना जिहड़ा है वो चलना शुरू हो जाता है जदों मैनू कहंदे ने कि बहुत चिरां बाद आए हो। ओके, कि दिल में बसे हो जरा ख्याल रखना, दिल में बसे

हो जरा ख्याल रखना, वक्त मिल जाए तो जरा याद रखना कि हमें तो आदत हो गई है तुम्हें याद करने की, हमें तो आदत हो गई है तुम्हें याद करने की, आपको बुरा लगे तो माफ करना। क्या बात है, बड़ा ही प्यारो जी। मैसी पी जैसा नू पिजन वाले ने किरण दरुला मैम, हाय मैम, हाउ आर यू फ्रॉम ग्रीन पार्क कपूरथला, एंड लिखा है थैंक यू सर जी, थैंक यू आपका, तमाम दोस्तों का जो प्यार प्यारी मैसेज हमें देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैसेज है सानू पाली प्याला होशियारपुर तो। पाली जी मेक श्योर जो प्याला है वो सिर्फ लस्सी ते चा एंड नींबू पानी का है। ओके जी, अगला मैसेज लिखा है कि कुछ दिलां दे साफ हुंदे आ, कुछ दिलां दे साफ हुंदे आ, कोई कोई धोखेबाज हुंदे आ, कुछ दिलां दे साफ हुंदे आ, कोई कोई धोखेबाज हुंदे आ, ते जो जिंदगी पर नहीं भुलदे वो स्कूल वेले यार हुंदे आ। बुड़ा जिंद नाल रल के स्कूल दे जदों अद्धी बैल हुंदी ही है ना, जो अद्धी छुट्टी हुंदी ही उदों चंगा भंगड़ा पाउणा या फिर बेंचों उपर चंगे मतलब ढोल वजा वजा के बेंच ही तोड़ देने। हाँ, स्कूलों वाले यारां नाल गलबात वक्री हुंदी है। चलो खैर, थैंक यू सो मच टू यू ऑलसो फॉर सेंडिंग ब्यूटीफुल मैसेज। एंड दोस्तों, समा हो चुका है दोपहर के 2:23:50, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 मिनट जड़े ने हो चुके हैं। सो बहुत सारे दोस्त सारे मैसेज मैं लै चुके हैं, थोड़ा मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुसी भी प्रोग्राम विच मैसेज भेजो 9855101027।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
0: तो आज
2: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
0: जी विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन

0: आज तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
1: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की।
0: जी,
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
0: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले।
0: जी,
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
0: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
0: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजी जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
0: जी,
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
0: जी,
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की।
0: जी,
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
0: जी।
1: है। फिर क्या होता है विमलेश?
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी,
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
0: जी।
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
0: जी।
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है। इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज।
0: तो श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया

0: जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
1: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
2: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
3: आ गए भैया। हाँ। लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ। हाँ।
2: बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गया।

0: भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
1: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
2: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
2: आए, आए।
3: हर गोविंद भाई,
2: हाँ?
3: तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
2: कहाँ बड़ी बहुरिया?
3: मेरी माँ के पास।
2: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
3: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
2: बड़ी बहुरिया।

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है अब। पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।

0: मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा चलता हूँ।
0: अच्छा
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।
3: भाई साहब,
4: हाँ,
3: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
4: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
3: अच्छा अच्छा।
4: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा। घबराओ मत, बता दूंगा।
3: तो कितना समय और लगेगा?
4: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
3: हाँ?

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवाला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। हाँ?

0: फूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी।
1: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
0: अच्छा अच्छा माँ जी।
1: अरे हर गोविंद क्या सोच रहे हो, कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हर गोविंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोविंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोविंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
0: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
1: अरे
0: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पैन लागू।
1: जीते रहो बेटा,
0: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई रहा खर्च तो है?
0: अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
0: अच्छा राम राम
3: राम राम
0: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। इसको उसकी मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: शाबाश, अब जी कैसा है?
1: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
0: कहे?
1: मुझे माफ कर दो,
0: पर
1: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
0: हरगोविंद भाई,
1: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
0: हरगोविंद भाई, तुम
1: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, यही रहूंगी।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
3: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
2: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
4: जी,
2: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
5: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless, and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां सेहत से जुड़ी हर बात हम आप तक पहुंचाते हैं। आपसे जुड़ते हैं प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय, और आप रहते हैं हमारे साथ उसी कार्यक्रम में जिसे आप प्यार से कहते हैं रेडियो डॉक्टर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज में बहुत कॉमन होता जा रहा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी तक बहुत कम लोग अच्छे से जान पाए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, लंबे वर्किंग आवर्स, अनियमित खान पान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, इन सब का असर सबसे पहले हमारी सेहत पर पड़ता है और ख़ासकर हमारे वज़न पर। और वज़न जब बढ़ जाता है, या यूं कहें कि बढ़ती जो ये मोटापे की समस्या है, ओबेसिटी की समस्या है, ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में हेल्थ समस्या बनता जा रहा है। तो ये जो सिर्फ देखने के लिए जब हम बात करते हैं कि ओबीस है या कोई मोटा है, तो वो लुक्स पर ही सिर्फ इफ़ेक्ट नहीं डालता है, वो कभी कभी गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न कर सकता है। और इन सब के लिए ज़रूरी होता है वज़न कम करना। पर कई बार कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो हर तरह से डाइट प्लान करने के बाद, जिम जाने के बाद, योग करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं पा पाते हैं। तो उनके लिए एक और तरीका है, उसी तरीके पर आज हम बात करेंगे।

0: वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी और ये किस तरह का विकल्प है, और क्या इसे हम ये माने कि ये वज़न कम करने का आसान तरीका है या इसके भी कुछ गंभीर या रिस्की आउटकम्स हो सकते हैं। ये सारी बातें आज हमने सोचा हम इस कार्यक्रम में करें, और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपको सही ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रही हूँ क्योंकि आज हम इन सवालों पर बिल्कुल सही साफ अनबायस तरीके से जानकारी चाहते हैं हमारे अपने दोनों एक्सपर्ट्स से। तो हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे दोनों रेडियो डॉक्टर्स, डॉक्टर निखिल गुप्ता, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, एसोसिएट डीन हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। नमस्कार डॉक्टर निखिल, स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
1: धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकुंद खेतान, आप को चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार जी, और आप सभी का स्वागत है, और हम इस ओबेसिटी जैसे मैम ने बताया उसके बारे में अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाएंगे।
0: जी बहुत धन्यवाद आप दोनों स्पेशलिस्ट को कि आप लोग आए हैं और समय निकाला है आपने, और इस कार्यक्रम में आप आज एक घंटे हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट कीजिए कि ये किस तरह की सर्जरी होती है, और इसके क्योंकि मैंने टॉपिक इसमें यही रखा है कि बेरियाट्रिक सर्जरीज प्रोस एंड कॉन्स, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है इस सर्जरी या हर सर्जरी के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान या रिस्क भी हो सकते हैं, तो हम आज उन दोनों पर जानकारी चाहेंगे आप दोनों से। और हमारे श्रोता जो इस के साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं आज भी जुड़ गए होंगे, आपको हमारे साथ रहना है इस कार्यक्रम में और अपनी समस्याओं को यहाँ हमारे रेडियो डॉक्टर्स के सामने रखना है जैसे आप करते हैं। फ़ोन नंबर्स वही हैं, मैं आपको बता दूं हमारे उन नए श्रोताओं के लिए जो आज पहली बार जुड़े हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए 2342-1080, 2342-1082, ये हमारी दो फ़ोन लाइंस हैं। और अगर आप दिल्ली से बाहर से हमसे जुड़ रहे हैं तो 011 आप लगाकर, दिल्ली का ये कोड है। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पर कुछ लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर आप लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो दिमाग में आता है, पहले डॉक्टर मुकुंद आपसे पूछूंगे कि ये जो सर्जरी है बेरियाट्रिक सर्जरी, व्हाट इज दिस?
2: बेरियाट्रिक सर्जरी इज बेसिकली, जब ये सर्जरी शुरू हुई थी आज से 2 दशक पहले, तब ये सर्जरी सिर्फ वेट लॉस सर्जरी के हिसाब से शुरू हुई थी। तब जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वज़न वाले और वज़न की वजह से ही परेशान थे, बट पिछले 1 दशक में हमने क्या देखा है कि ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है ये मेटाबॉलिक सर्जरी बन गई है। जैसा आपने अभी बताया कि ये खाली एक वज़न के लिए नहीं है, बट ये वज़न के साथ साथ बीमारियाँ जो अपने साथ लाती है उनको ठीक करने का एक मेजर तरीका है, जो मरीज अपने एक्सरसाइज या डाइट या और किसी तरीके से अपना वज़न नहीं कर पाते। तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी एक तरीके से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये होती तो 1958-59 में शुरू हुई थी। अच्छा। बट तब ओपन सर्जरीज होती थी, तो ओपन सर्जरीज की अपनी प्रॉब्लम्स होती थी। अब ये जब से लैप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति वाला इरा शुरू हुआ है, इसने इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया है, और अब ये इतनी कॉमन हो गई है कि अगर हम देखें तो रोज़, अगर मान के चले हम अगर दिल्ली शहर में भी माने तो रोज़ करीब 100 मरीज़ इसके ऑपरेट होते होंगे। अच्छा। तो ये इतना कॉमन सर्जरी हो गई
0: जी, पर अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो इस बारे में हमें जाननी ज़रूरी हैं, अभी तक लोग उतनी सही तरीके से इसके बारे में जानकारी जुटा नहीं पाए हैं, और इसीलिए रेडियो डॉक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर मुकुंद ने हमें कहा कि बहुत सारी और कारण होते हैं जो वेट कम होना चाहिए, जिसमें बीमारियाँ जो हो जाती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर निखिल कि अगर कोई ओबीस है, ओवरवेट है, सबसे पहले तो कैसे पहचानेंगे, वो कैसे उसकी कैटेगराइज कैसे किया जाता है, जैसे बीएमआई जिसकी बात लोग जानते हैं, और सेकेंडली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो जाती हैं अगर मोटापा हो तो?
1: देखिए, जैसा डॉक्टर मुकुंद सर ने बताया, और अगर हम बात करें आज से 40-50 साल पहले, खासतौर पे अपने देश की बात करें, तो जब भी हम किसी मोटे आदमी से मिलते थे तो एक इंप्रेशन माइंड में आता था भी खाते पीते घर का है आदमी या औरत, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि ये एक खाते पीते घर की निशानी नहीं है, ये एक बीमारी है। और सिर्फ मरीज वो इंसान कैसा लगता है, ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, मोटापा अपने आप में पूरा पैकेज है, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, या मैं ये कहूँगा कि

0: शायद ही शरीर का ऐसा कोई सिस्टम होगा या ऐसा कोई ऑर्गेन होगा जिसकी बीमारी मोटापे के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप ये इसको ऐसे कल्पना कीजिए कि एक 60 किलो के आदमी के ऊपर अगर 120 किलो का वज़न उसको उठाना पड़ जाए तो उसके शरीर के सारे हिस्से किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। उसके हार्ट को डबल काम करना पड़ रहा है, उसके फेफड़ों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उसके जोड़ जल्दी घिस रहे हैं, उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, कई तरह के कैंसर, ये सारी बीमारियां हैं जिनसे वो आदमी अफेक्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से। और अगर अपने वो मोटापे पे काबू पा ले, जिसमें सबसे पहले तो हम यही सलाह देते हैं, खाने पीने की
1: जी
0: सलाह,
1: जी
0: एक्सरसाइज, अपना डाइट रेगुलेट
1: डाइट
0: करके, लेकिन अगर कोई मरीज ये सब करके भी अपने मोटापे से छुटकारा नहीं पा पा रहा है, तो अब आज की डेट में बैरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी अवेलेबल है जिसकी मदद लेकर वो दोबारा से फिट हो सकता है और इन सब बीमारियों से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकता है।
1: जी तो इस
0: अच्छा
1: बारे
0: एक
1: में
0: बात और, जो
1: हाँ
0: आपने
1: जी
0: बीएमआई की बात, वो
1: जी
0: तो रह गई
1: हाँ
0: हमारी,
1: हाँ
0: मोटापा कहते किसको है?
1: जी
0: मोटापे के लिए बेसिकली जो शरीर का वजन कितना होना चाहिए ये या मोटापे में है या नॉर्मल इंसान है डिपेंड करता है उसका वजन और उसकी हाइट पे। जैसा कि ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि हर आदमी का आइडियल वेट उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, तो बीएमआई जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं वो निकाला जाता है वजन किलोग्राम में और इसको अगर डिवाइड किया जाए हाइट मीटर में उसका स्क्वायर, तो वेट बाय हाइट मीटर स्क्वायर, तो इससे बीएमआई निकलता है। बीएमआई ऑन एन एवरेज कहते हैं 25 से 28 के बीच में रहे तो वो एक आइडल रहता है। अगर हम मेटाबॉलिक सर्जरी की बात करें कि उसके लिए कब हमको जाना चाहिए, इंडिया अपने देश की बात करें सेटिंग में, तो नॉर्मली अगर पेशेंट का बीएमआई 32.5 32.5 से ऊपर है, साथ में उसको कोई कोमॉर्बिडिटी या जो मोटापे के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिनकी हमने बात करी अभी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कुछ और, तो इस तरह के मरीज में हम मेटाबॉलिक सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं।
1: इस बारे में और मैं डिटेल में जानना चाहूंगी आप दोनों से कि किसकी सर्जरी की जा सकती है, किसको एक्चुअली सोचना चाहिए कि मैं इस तरह की सर्जरी कराऊं। पर यहाँ पर पहले हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, डॉक्टर निखिल की पसंद का ये गीत मैंने निकाला है, और वो सुनकर हम वापस आएंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए, आप हमें मैसेज करिए, और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज हम बात कर रहे हैं बैरियाटिक सर्जरी, इसके फायदे और उसके नुकसान के बारे में। हमारे दो स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात डॉक्टर निखिल ने भी बोली थी कि कुछ इतना BMI से ऊपर होगा, जैसे 32 से ऊपर या कुछ तो किया जाता है। आप थोड़ा सा इसमें बताइए कि क्या यही एक क्राइटेरिया होता है कि BMI, या कुछ और भी देखा जाता है, या कौन ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे करानी चाहिए कि नहीं?
1: देखिए, जब हम छोटे बच्चों में आजकल हम देखते हैं स्कूल में भी ओबेसिटी या वज़न ज़्यादा हो रहा है, और करीब हम जब स्कूल का सर्वे, हमने भी आज से 3-4 साल पहले सारे स्कूल्स का दिल्ली का मिलकर के कुछ एसोसिएशंस के साथ किया था, तो हमने देखा था कि 25-30% जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो ओबेज हैं, है ना। ओबेसिटी मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ओबेसिटी। जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया, क्लास 1 ओबेसिटी है कि हमारा BMI जो है वो 23 से 28 हो। क्लास 2 ओबेसिटी है कि 23 से 28 से लेकर के 32.5 तक हो। और जो क्लास 3 ओबेसिटी में आ गए 32.5 वाले, उनको किसी तरीके की मदद चाहिए,
0: उन्हें चाहिए, चाहे वो
1: उन्हें
0: किसी
1: मदद
0: तरह से
1: चाहिए,
0: भी
1: वो
0: हो।
1: किसी भी तरीके से मदद चाहिए, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाले तरीके हैं, जैसे आपने बताया कि डाइट है, एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब उनको फ्रूटफुल नहीं रिजल्ट्स दे पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि एक BMI एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया होता है हमारा वेस्ट हिप रेशियो, है ना, कि वेस्ट और हिप रेशियो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग होता है। मेल्स के लिए 0.8 से ऊपर हो, फीमेल्स के लिए 0.9 से ऊपर हो, तो हम कहते हैं कि ये आपका वेट ज़्यादा है, अगर वेस्ट हिप रेशियो बढ़ जाए तो। जैसे मैंने बताया कि यंग बच्चों में अगर हम देखते हैं तो हम परसेंटाइल देखते हैं, BMI नहीं देखते, उसमें हम परसेंटाइल देखते हैं, परसेंटाइल वेट गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ हमारे क्राइटेरियाज हैं, बट ये मेन क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपकी ओबेसिटी क्लास क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या तरीका है जो आपको वेट लॉस में मदद करेगा।
0: तो जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया, ओबीस है, जिसको आप कह रहे हैं थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है, तो क्या आप उसको अपने सामने वो सारे ऑप्शंस देते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्जरी, कि आप लोग सर्जरी पार्ट ही डील करते हैं?
1: नहीं, हम देखिए ओबेसिटी जो है वो एज ए होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए।
0: जी,
1: हम ये नहीं कह सकते, जैसे हमारा मेटाबॉलिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ हम प्राइवेट में काम करते हैं, और हमारा एक मेटाबॉलिक इंस्टीट्यूट है जहाँ हम ओबेसिटी एज ए होल को होलिस्टिकली अप्रोच करते हैं। यानी ये नहीं कि हमारे पास, बींग अ सर्जन, मेरे पास पेशेंट आया तो मैं उसको खाली सर्जिकल ऑप्शंस बताऊंगा, तो उसको हमारे पास डाइटिशियन भी है, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी है अलग से, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एंड देन द लास्ट इज व्हेन वी कम इनटू पिक्चर, देन सर्जन्स कम इनटू पिक्चर।
0: यस, ओके। तो हमारे एक अभी श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात कर लेते हैं, कुछ पूछना है। हेलो,
2: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी और डॉक्टर साहब दोनों को भी नमस्ते।
0: जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं और नाम बता दीजिए अपना।
2: मैं योगराज बोल रहा हूँ गुड़गावा से।
0: जी जी, बताएं क्या पूछना है।
2: सवाल मेरा ये है जी, 23 साल की बिटिया है और उनका जो है वजन कम हो रहा है। 23 साल की बिटिया का वजन कितना, 29, 35 किलो वजन है।

0: उनका वजन कम होता है और खाना खाती है तो पेट में दर्द की शिकायत है। अल्ट्रासाउंड करवाया तो इन्फेक्शन आया हाथों में
1: जी, तो इन्फेक्शन
0: बताएं, फोन नहीं काटना मैडम, पूरी बात ना हो तब तक।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, जवाब दे रहे हैं आपको, जी बताएं।
2: अच्छा योगराज जी, जैसा आपने बताया कि आपकी बिटिया का वज़न कम हो रहा है और कुछ खाने पे पेट में दर्द भी होता है और जांचों में शायद पेट का इन्फेक्शन आप बता रहे हैं, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि वज़न कम होने के बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें एक वजह

0: भी पेट में दर्द भी होता है और जांचों में शायद पेट का इन्फेक्शन आप बता रहे हैं, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि वज़न कम होने के बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें एक वजह पेट का टीबी भी हो सकता है या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी बिटिया को लेकर जो है नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, फिजिशियन हो या सर्जन हो या पेट के डॉक्टर हो, उनसे मिलके जो ज़रूरी जांचें हैं, जिसमें हो सकता है एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, दूरबीन की जांच या सीटी स्कैन वगैरह हो, जिससे कि बीमारी पकड़ में आए और उसका इलाज शुरू हो सके।
1: अल्ट्रासाउंड जैसे करवाया था
0: हाँ जी
1: तो उसमें इन्फेक्शन आया, और चार पांच जांच और भी करवाई, जैसे टीवी की है या छह सात जांच हमने करवाई, लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं आई।
0: देखिए, अब ये तो सारी रिपोर्टें देख के ही कुछ बता पाएंगे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पेट का टीबी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी जांच में पकड़ पाना उसको आसान नहीं होता, और कई बार सिर्फ लक्षणों के आधार पे ही हमको दवाई शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह यह है टीबी हमारे देश में, खासतौर पर उत्तर भारत में, बहुत कॉमन भी है। तो अगर उसके लक्षण उस तरफ जा रहे हैं तो टीबी की दवाई शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये फैसला जो डॉक्टर उनको देख रहा है, उनका इलाज कर रहा है, वो ही ले पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि सारी जांचों की रिपोर्ट लेकर आप अपने डॉक्टर से मिलिए, जिनसे भी आप इसका इलाज करा रहे हैं, और वो ही आपकी इसमें मदद कर पाएंगे।
2: चलिए, धन्यवाद। एक और हमारे साथी हमारे साथ कॉल पर हैं। हेलो
3: हेलो,
2: जी, जी नमस्कार
3: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
2: जी। जी राजेंद्र जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं।
3: हाँ जी, 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75-80 केजी के आसपास मेरा वेट है, वजन है। तो पहले तो शालिनी मैम को, शालिनता से ही नमस्कार,
2: जी नमस्कार जी,
3: और दोनों डॉक्टर साहिबान को भी नमस्कार।
4: नमस्कार जी।
3: डॉक्टर साहब, मेरे 5 सवाल हैं, बड़ी मेहरबानी उनका जवाब दे। पहला सवाल मेरा ये है कि किसी शख्स को या पेशेंट को अगर थायराइड है या शुगर है, डायबिटीज है, तो उसका वेट और मतलब मोटापा और वजन घटेगा या बढ़ेगा, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कई शख्स ऐसे मैंने देखे लाइफ में, कुछ भी खा लें कुछ भी पी लें, ना वो मोटे होते ना उनका वजन बढ़ता, तो वो बेचारे क्या करें, उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का जो है ढांचा बन के रह जाता है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे कि उनके हिप्स पे और मतलब कुल्लों पे, टोंट पे और ये चेस्ट पे और गर्दन पे और गालों पे बहुत चर्बी होती है, जैसे आपने सिने जगत में महमूद अली और टुनटुन उमा देवी होती तो वो देखे होंगे, तो वो लोग बेचारे क्या करें ये मतलब चर्बी और वजन घटाने के लिए। और चौथा सवाल मेरा ये है कि डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं वजन और मोटापा घटाने के लिए। और पांचवा, जो आप ये सर्जरी बता रहे हैं पैराबेडिक सर्जरी, तो इसमें अगर सर्जरी होती है तो इसमें मतलब कि इसमें टाइम कितना लगता है, खून खराबा ज्यादा तो नहीं होता, तो जरा बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी।
2: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो पूरा कार्यक्रम अपने प्रश्नों में समेटने की कोशिश की है राजेंद्र जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आप पूरा प्रोग्राम सुनेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, लेकिन हाँ, आपके जो प्रश्न हैं डॉक्टर साहब उनके जवाब दे रहे हैं। सर बताएं, इन्होंने सबसे पहले ये पूछा था कि थायराइड शुगर जो जिनको होता है उनका वजन पर क्या इफेक्ट होता है इसका।
4: देखिए राजन जी, जो आपका थायराइड और शुगर है ना, ये दोनों ही तरीके से काम करता है। अगर हमारा थायराइड डिस्टर्ब्ड है या शुगर अनकंट्रोल्ड है तो हमारा वज़न बढ़ता भी है। तो थायराइड की बीमारियां दोनों ही तरीके की होती हैं, जिसमें थायराइड लेवल्स बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। तो अगर आपके थायराइड हार्मोन के लेवल्स बढ़ गए हैं तो आपका वज़न कम होता है। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन लेवल्स कम हो गए हैं तो आपका वज़न बढ़ने लगता है। सिमिलरली ब्लड शुगर का है कि शुगर, ऐसा नहीं कि शुगर की बीमारी से वज़न बढ़ता है या वज़न कम होता है। अगर अनकंट्रोल्ड शुगर होगी तो आपका वज़न बढ़ भी सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाती है जब, या कुछ शुगर की मेडिसिंस भी होती हैं जो हमारे वज़न को कम करती हैं, तो ये जब तक हम जाँचें नहीं कराएंगे या कारण नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम ऐसे डिक्टेट नहीं कर सकते टर्म्स को कि आपका थायराइड की वजह से वजन ज़्यादा या कम है या शुगर की वजह से ज़्यादा कम है।
2: जी, और कुछ लोगों का नहीं बढ़ता है ये भी उन्होंने पूछा था, चर्बी बहुत होती है उसका। तो बहुत सारी चीज़ें तो हम बात करते ही जा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, लेकिन सर्जरी पे जो उन्होंने बात की जो हमारे इस कार्यक्रम से संबंध रखती है, कि क्या इतना कितना समय लगता है इस सर्जरी में। और मैं इसमें और जोड़ूंगी कि इसमें जब सर्जरी के बाद, डॉक्टर निखिल आप बताएं कि इसको नॉर्मल रूटीन में आने में कितना टाइम लगता है पेशेंट को।
0: देखिए, अगर हम

0: सर्जरी के टाइम की बात करें तो ये मेटाबॉलिक सर्जरी की 3-4 वैरायटीज़ हैं और हर सर्जरी का अपना अलग अलग टाइम है। फिर भी अगर मोटी मोटी बात करें तो 45 मिनट से लेकर आप कह सकते हैं करीब 2 घंटे इसमें लग सकते हैं। लेकिन सर्जरी से पहले का भी टाइम होता है, मरीज़ की पोजिशनिंग वगैरह, और इस तरह के मरीज़ अपने वज़न की वजह से सर्जरी के लिए भी थोड़े से हाई रिस्क केसेस होते हैं। इनका हार्ट, इनका लंग, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज लेवल पे है, तो उसको सर्जरी तक ऑप्टिमाइज करने के लिए एनेस्थेटिस्ट को भी यानी कि बेहोशी के डॉक्टर को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो टाइम लेकिन अपने आप में मैं कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानूंगा, और जैसा इन्होंने बोला कोई बहुत खून खराबा नहीं होता। ये सारे ऑपरेशन दूरबीन से यानी कि लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक तरीके से होते हैं, और कोई खून या ब्लड लॉस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में ऑपरेशन हो जाते हैं, 24 घंटे के बाद ही या कभी तो उससे भी पहले मतलब 12 घंटे के बाद मरीज़ को सिप्स यानी कि लिक्विड शुरू किए जाते हैं, और 1 से 2 दिन के बाद मरीज़ के अस्पताल से छुट्टी भी हो जाती है। 6-8 घंटे में ही मरीज़ खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है, और एक बार जब 24 घंटे के बाद मरीज़ लिक्विड्स ले पाता है और चल फिर पाता है तभी उसके अस्पताल से छुट्टी की जाती है। ये सब फ़ायदे हैं लैप्रोस्कोपी के, और सर्जिकल टेक्निक्स में जितनी एडवांसमेंट आई है उस सब के सारे फ़ायदे हैं जो बेरियाट्रिक सर्जरी के मरीज़ को दिए जाते हैं।
1: जी
0: एक इनका सवाल बड़ा अच्छा था जो मैं चाहूँगा उसका जवाब देना। इन्होंने कहा था कि इन्होंने कई ऐसे मरीज़ देखे हैं या पुरानी
1: जी
0: हिंदी फिल्मों के हीरो उनके
1: हाँ
0: नाम
1: जो
0: लिए थे। यस,
1: ज्यादा वेट
0: ये
1: जी
0: एक्चुअली में ये ऐसा देखा गया है कि एक फ़र्क है हमारे देश के मोटे मरीज़ों में और वेस्टर्न वर्ल्ड के मोटे मरीज़ों में। हमारे देश में इसको ट्रंकल ओबेसिटी हम कहते हैं कि पेट निकला हुआ है,
1: जी
0: कंधे और बाजू पतले पतले होंगे लेकिन सारा का सारा वजन जो है
1: जो
0: वो जिसको
1: हाँ
0: पहले ज़माने में टोन कहते थे या बेली, लेकिन
1: ये
0: यही
1: एशियन
0: सबसे
1: पॉपुलेशन में
0: एशियन
1: ज्यादा
0: पॉपुलेशन
1: जी
0: में, और सबसे ज़्यादा खराब यही है जो ट्रंकल ओबेसिटी है।
1: जी
0: अगर आप बाहर के मोटे मरीज देखें वो 200-250 किलो के भी होंगे लेकिन वो लंबा आदमी
1: जी
0: है,
1: डिस्ट्रीब्यूटेड होता
0: कंधे
1: है
0: चौड़े हैं उसके,
1: हाँ
0: और उसके बाजू है, उसकी थाइज हैं। यहाँ पे हम लोगों में हिंदुस्तानियों में या एशियन पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रंकल ओबेसिटी है जो ज़्यादा खराब है,
1: जी
0: ये शुगर ज़्यादा कॉज करती है। तो इसीलिए बाहर के मरीजों में मोटापा की सर्जरी की जाती है वज़न कम करने के लिए ज़्यादा, लेकिन हमारे देश में मोटापे के साथ बीमारियां बहुत जुड़ी हुई हैं इस फैट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से।
1: तो शायद ये हमारे लिए और उतना
0: हमारे
1: उपयोगी
0: लिए
1: है,
0: ज़्यादा
1: ज्यादा
0: उपयोगी है,
1: उपयोगी है।
0: इसीलिए ये जो अभी हम बीएमआई की बात कर रहे थे, बीएमआई की सारी कट ऑफ एशियन पॉपुलेशन में वेस्टर्न वर्ल्ड से 2.5 कम है। मतलब बाहर के मरीज में इंडिकेशन 35 से ऊपर है बीएमआई, लेकिन एशियन पेशेंट्स में यही बीएमआई की कट ऑफ 32.5 है,
1: 32.5 है
0: 32.5,
1: तो वो रीजन बिकॉज
0: ये
1: ऑफ
0: इन्हीं
1: दिस
0: सब की वजह से।
1: जी। तो आपने बताया कि जिस तरह से सर्जरी होती है वो तो एक आम सर्जरी की तरह होता है, उसमें वापसी भी लोगों की नॉर्मल लाइफ में वैसे ही है, लेकिन इस सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है, और एक टाइप्स की भी बात कर रहे थे आप, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं, डॉक्टर मुकुंद आप भी बताएं कि ये कितनी टाइप्स की सर्जरीज होती हैं इसमें बेरियाट्रिक
2: देखिए, ये
1: में।
2: जो बेरियाट्रिक सर्जरी है ये बेसिकली मेनली दो तरीके की सर्जरीज होती हैं। एक रेस्ट्रिक्टिव, जिसमें हम खाने की आपकी जो कैपेसिटी है उसको कम कर रहे हैं खाली।
1: अच्छा
2: दूसरी होती है कि जिसमें रेस्ट्रिक्शन और माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन मतलब हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पहले उसको डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हमारे इंटेस्टिन्स में जाता है और इंटेस्टिन्स उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी और सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो कहलाती है माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड माल एब्जॉर्प्शन है कि जिसमें हमारे खाने की कैपेसिटी तो कम हुई बट हमारा कुछ पार्ट ऑफ इंटेस्टिन बायपास हो गया। जैसे हम शहरों में बायपास रोड देखते हैं, वो बड़ी रोड है बट हमने ट्रैफिक को बायपास कर दिया, इसमें हम जो इंटेस्टिन्स को बायपास करते हैं तो जो खाने का मिक्सिंग है विथ दी बॉडी जूसेस, मेनली जब खाना हम खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट ग्लैंड से जो हमारे जूसेस बन रहे हैं वो जूसेस उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। उन जूसों से जब तक वो मिक्स नहीं होगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली। तो जब हमने बायपास कर दिया तो उसका वो जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस में डबल तरीके से इफेक्ट करती है, ये रेस्ट्रिक्टिव और माल अब्सॉर्प्टिव सर्जरीज।
1: लेकिन आपने बोला कि हम उसको बायपास कर देते हैं, तो क्या बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो जाएगी अगर किसी की ये सर्जरी हुई है तो?
2: ये जो जिन मरीजों में हम ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी वाला प्रोसीजर करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक बायपास सर्जरीज कहते हैं, उनमें अमूनन हम देखते हैं जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं, है ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादातर पब्लिक वेजिटेरियन होती है, तो वेजिटेरियंस में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि उनकी डाइट में वैसे ही न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और दूसरा प्रोटीन्स कम होते हैं। तो हम जैसे पहले पढ़ते थे मेडिकल

0: कॉलेज में भी जब हम सोशल्स अपना पढ़ते थे कि प्रोटीन कैलरी माल न्यूट्रिशन होता है, तो हम सिर्फ कैलरी माल न्यूट्रिशन चाहते हैं ना, हम प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं ना हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं। तो कई बार इन मरीज़ों में हमें शुरू के कुछ टाइम, जब तक मरीज़ रिकवर कर रहा होता है, अपना वेट लॉस जर्नी में चल रहा होता है, उस जर्नी के दौरान हम उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेने के लिए एडवाइस करते हैं।
1: ओके, तो सप्लीमेंट्स देने पड़ सकते हैं, और बाद में जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद भी क्या डॉक्टर निखिल बताएं कि किस तरह का खान पान उन्हें रखना होता है या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, क्या तब भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं या टेस्ट कराना पड़ता है?
2: देखिए, बिल्कुल सही जैसे अभी बात बताई कि बाईपास सर्जरी के बाद खास तौर पे कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स की या सप्लीमेंट्स की मरीज़ को ज़रूरत पड़ सकती है, और उसको रेगुलर फॉलोअप में रखा जाता है, टाइम टू टाइम उसके हाँ टेस्ट ज़रूर कराए जाते हैं। और एक बार जब एडिक्वेट वेट लॉस हो जाता है या जो हमारा टारगेट वेट है वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ये सप्लीमेंट्स बंद किए जा सकते हैं। अगर पेशेंट ने अपना वेट लॉस अचीव कर लिया है, एक आइडल वेट कर लिया है, उसका लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन ये सब हो गई है, तो इन सप्लीमेंट्स को बंद किया जा सकता है पहली बार। लेकिन तब भी मैं ज़रूर कहूँगा कुछ कुछ मरीज़ों को इनकी रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर दिन में एक गोली लेनी भी पड़े तो। लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं, जो उसके उससे अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि वही मरीज़ जो ऑपरेशन के पहले दिन में ब्लड प्रेशर की और शुगर की 5-6-7 गोलियां खा रहा था, वो सब बंद हो जाती हैं, डायबिटीज़ अच्छा। ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, हार्ट अटैक का खतरा कम हो गया, एस्थमा में
1: तो ये दवाइयाँ इमीडिएट बंद हो जाती हैं उसके बाद,
2: बहुत जल्दी।
1: अच्छा,
2: बहुत जल्दी, बिल्कुल। तो इनफैक्ट हम ऑपरेशन के एकदम बाद तो पहले बंद ही करते हैं सारी दवाइयाँ, और फिर टाइम टू टाइम उसके टेस्ट करा के देखते हैं कि अब उसको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। काफ़ी मरीजों में दवाई बंद हो जाती है, मोस्टली पेशेंट्स में अगर बंद नहीं भी होती है तो रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है, दैट इज़ फॉर श्योर।
1: जी, यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गीत सुनेंगे, और ये गीत डॉक्टर मुकुंद की पसंद का है तो हम सब आनंद लेते हैं इस गीत का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, और अभी बहुत सारी बातें पूछना बाकी हैं। आप भी कनेक्ट हुई है हमारे साथ 49 पर और व्हाट्सएप के ज़रिए।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज बात हो रही है बैरिएट्रिक सर्जरी पर, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए हैं। हमें देवदत्त पारसोलिया जी ने लिखकर भेजा है, नमस्कार टू रिस्पेक्टेड आरजे रेडियो डॉक्टर एंड ऑल टीम ऑफ एफएम रेनबो, नाइस टॉपिक, गुड वॉइस एंड सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। और ये एक मैसेज आया है, लिखा है परिधि ने दिल्ली से, ग्रेट टॉपिक, थैंक यू। इनका एक क्वेश्चन है कि हाउ इज़ लिपोसक्शन डिफरेंट देन बैरिएट्रिक सर्जरी, एंड डू बैरिएट्रिक सर्जरी लीव लाइफ लॉन्ग सर्जरी मार्क्स, और इज इट मिनिमल इन्वेसिव? ये दो चीज़ें पूछी हैं तो डॉक्टर मुकुल।
2: हाँ तो परिधि, मैं आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये बहुत सारे जो पब्लिक है उनके दिमाग में रहता है कि ये किस तरीके की सर्जरी है बैरिएट्रिक सर्जरी, और ये लाइपोसक्शन से कैसे डिफरेंट है। तो लाइपोसक्शन एक तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसमें हम वजन की वजह से जहाँ जहाँ शरीर में हमारी चर्बी, तो चर्बी जैसे डॉक्टर निखिल ने पहले भी बताया कि चर्बी दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तो हमारे शरीर में बाहर चमड़ी के नीचे है जिसको हम पेरिफेरल फैट कहते हैं, है ना, एक हमारा विसरल फैट है, जैसे हमारा ट्रंक में जो इकट्ठा है वो खाली पेट में बाहर भी इकट्ठा है, और पेट के अंदर जो विसरा हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें और उसके आसपास भी इकट्ठा है। तो ये जो लाइपोसक्शन है, ये हम जो पेरिफेरल फैट है स्पेशली जैसे थाइज में हो गया, आर्म्स में हो गया, एब्डोमन में हो गया, बैक में हो गया, वेस्ट में हो गया, कहीं हिप्स में हो गया, वहाँ से हम सिर्फ चर्बी की जो सेल्स होती हैं उनको सक्शन करके निकाल लेते हैं, उसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। तो ये प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी है जो बॉडी शेपिंग सर्जरी है, और जो हम बैरिएट्रिक सर्जरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अब मेटाबॉलिक सर्जरी है, ये सिर्फ वेट लॉस सर्जरी नहीं है, वेट से एसोसिएटेड बीमारियों को भी ठीक करने में हमारी मदद करती है। तो ये ओवरऑल वेट लॉस में हेल्प करती है, नॉट ओनली पेरिफेरल बट विसरल फैट भी कम करती है, जिसकी वजह से हमारी बीमारियों की जो जड़ है।
1: तो हम इसको ऐसा समझें कि वो सिर्फ लुक्स पे इफेक्ट डालेगी और ये आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और इन्होंने ये जो पूछा है कि क्या बैरिएट्रिक सर्जरी में क्या सर्जरी मार्क्स रह जाते हैं लॉन्ग टर्म, या इसको रोबोटिक, या आप जैसे बता रहे थे कि आजकल मिनिमम इन्वेसिव तरीके से किया जाता है तो वो मार्क्स नहीं रहते हैं?
3: जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात करी थी कि बैरिएट्रिक सर्जरी 99.9% या 100% लैप्रोस्कोपिकली ही होती है या रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक, और ये दोनों ही मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे कट दिए जाते हैं, 10 mm, 5 mm, आप मानिए 1 cm के और आधे सेंटीमीटर के कट होते हैं जो ना के बराबर दिखाई देते हैं, यही इसकी एडवांटेज है। और इन छोटे छोटे कट से हम पोर्ट्स डालते हैं, उससे ही हमारे जो इंस्ट्रूमेंट से पतले पतले वो अंदर जाते हैं और उसके थ्रू सारा ऑपरेशन किया जाता है। इस सबका फ़ायदा यह है कि मरीज़ की पोस्ट ऑप में रिकवरी बहुत फास्ट है, दर्द का एहसास बहुत कम होता है मरीज़ को, वो बहुत जल्दी खड़ा होकर चलना फिरना अपने सारे कामकाज कर सकता है, और लुक्स वाइज भी, क्योंकि ये स्कार ना के

0: बराबर दिखाई देते हैं, तो यही सब स्कोप की एडवांटेज है बजाय कि ओपन सर्जरी के।
1: जी
2: तो मैं इसमें एक कमेंट ऐड करूंगा, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम ये सुनते थे जब हम मेडिकल स्कूल में थे कि बिग सर्जन्स मेक बिग इंसिजन्स, तो हमारे बड़े बड़े जो सर्जन्स थे कि ये बड़ी अच्छी सर्जरी करते हैं, बड़े चीरे लगाते हैं, वो सर्जन्स का पर्सपेक्टिव था। अब अगर हम पेशेंट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो ये जो पेशेंट्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, इसी की वजह से या लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का इजाद हुआ है कि हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि सर्जन की कंफर्ट नहीं है, पेशेंट की कंफर्ट है। जैसे डॉक्टर निखिल ने कहा कि अब वो मरीज जो है वो 4-6 घंटे बाद अपने पैरों पर खड़े होकर चल सकता है, जिस मरीज की सर्जरी 4 घंटे पहले, सर्जरी तो बड़ी है बट मरीज के लिए वो छोटी है क्योंकि उसकी दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी हुई है।
1: जी जी इसके फायदे हैं। और देखिए एक मैसेज और आया है हमारे पास, लिखने वाले का नाम मुझे अभी दिख नहीं रहा है, अगर मिलेगा तो मैं पढ़ दूंगी। इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून, हाँ यहाँ इन्होंने नाम लिखा है प्रकाश फ्रॉम दिल्ली। इन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा जो है उसका वेट 150 kg है और 30 ईयर्स उसकी एज है, वो सब कुछ करता है, डाइट भी एक्सरसाइज भी, पर उसका वेट कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और कुछ और सर्जरी करा के, अगर हम ये सर्जरी कराते हैं तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे क्या? तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या इसके, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं सर?
0: देखिए, जैसे इन्होंने बताया अपने बेटे के वज़न के बारे में, लेकिन क्योंकि इन्होंने हाइट नहीं बताई है तो हम BMI तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ
1: जी
0: एक बात ज़रूर है कि 150 किलो तो बहुत ज़्यादा है
1: जी 150
0: और हर लिहाज से इसका बच्चे का जो BMI है वो 45 से ऊपर ही आएगा मेरे हिसाब से। और जैसा बताया कि वो खाने पीने का परहेज और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ ट्राई कर चुका है, लेकिन तब भी इच्छा मुताबिक वो वेट लॉस नहीं अचीव कर पा रहा है। तो जितना इस हिस्ट्री से जो पता लग रहा है कि यस, वेट लॉस सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी ज़रूर इसकी मदद करेगी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स की बात करी,
1: जी
0: तो देखिए साइड इफ़ेक्ट मैं कहूँगा किसी भी दवाई के या किसी भी ऑपरेशन, कोई भी ऐसा ऑपरेशन या दवाई नहीं है जिसके साथ साइड इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, किसी भी ऑपरेशन से पहले, इवन मेटाबॉलिक सर्जरी से पहले भी हम सब तरह की सावधानियां बरतते हैं। इस तरह के मरीजों का बहुत ज़्यादा चेकअप किया जाता है ऑपरेशन के पहले, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी, इनके पूरे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इनके हार्ट का, लंग का, शुगर स्टेटस, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें ऑपरेशन के पहले चेक की जाती हैं, सारी सावधानियाँ बरती जाती हैं, जिससे कि ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन कम से कम रहें। इसीलिए इन मरीजों को बहुत जल्दी हम, जैसे बात की थी, खड़ा कर देते हैं 4-6 घंटे में ही, जिससे कि ऑपरेशन के बाद जो कुछ मरीजों को निमोनिया हो जाता है लंबे समय तक लेटे रहने से, या खून के कतरे क्लॉट जम जाते हैं, उन सबको रोकने के लिए ही इन सब मरीजों को जल्दी खड़ा किया जाता है, जल्दी खाना पीना शुरू किया जाता है। आज की डेट में मैं कहूँगा ये सर्जरी इतनी सेफ हो गई है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी और ऑपरेशन से, चाहे वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो या हर्निया का ऑपरेशन हो और चाहे वो मेटाबॉलिक सर्जरी हो, इनकी कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट बराबर हो गई है।
1: जी, यहाँ पर हम अपने एक श्रोता को फोन लाइन पर जो वेट कर रहे हैं उनसे बात कर देते हैं। हेलो
3: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार, बताइए।
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
3: जी मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरी एज 44 ईयर्स है, 44 साल सर। और मेरा मतलब वजन पीछे था अभी कुछ दिन पहले 102 किलोग्राम था सर, और हाइट है मेरी 5 फुट 10 इंच या 11 इंच। तो सर मेरा पेट बहुत निकलो है और मेरे भाई का भी पेट बहुत निकलो है, जबकि खाने का तो 3 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है सही हिसाब से हमें। तो अब इस बड़े हुए पेट को कैसे कम किया जाए सर, प्लीज ये बताइए।
1: वेट को कैसे कम करें, इन्होंने बताया 102 किलो इनका।
2: देखिए जैसे आपने बताया तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, जैसे आपने कहा कि आपकी हाइट 5, 10 या 11 है, इसका मतलब है आप 175 सेंटीमीटर आपकी हाइट नाप लें, तो एक सिंपल कैलकुलेशन होता है कि हम आइडियल वेट कितना माने, तो उसमें से अगर हम 100 घटा दें, जो हमारी हाइट है उसमें से अगर हम 100 घटा देते हैं तो हमारी हाई जो हाइट है उसके लिए जो हमारा वेट है उसकी अपर लिमिट आ जाती है। तो अगर 175 आपकी माने तो आपका 75 किलो वज़न होना चाहिए, यानी आप 25 से 30 किलो अपने वज़न से ऊपर हैं। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम BMI कैलकुलेट करेंगे तो आपका BMI जो है वो Grade 2 level ओबेसिटी में आएगा। तो Grade 3 ओबेसिटी जहां आपको किसी तरीके की सर्जिकल हेल्प चाहिए, आप उस कैटेगरी में अभी नहीं फॉल करते हैं ऐसा लगता है, जब तक हम पूरे टेस्ट नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम पड़ेगा एग्जैक्ट। बट अगर आप Class 2 ओबेसिटी में हैं तो ये आपके लिए अभी आँख खुलनी चाहिए, है ना, कि जब आँख खुली तब सवेरा है। अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो आप धीरे धीरे करके वो कब क्लास 3 ओबेसिटी में आ जाएंगे आपको नहीं मालूम। तो आपको एक

0: एडवाइस लेना चाहिए या तो फिजिशियन से लेना चाहिए, अगर आपके साथ कुछ इसमें बीमारियां हैं, जैसे डॉक्टर निखिल ने बोला ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, नींद की बीमारी, थायराइड की बीमारी, जोड़ों की बीमारी या गुर्दे की बीमारियां, तो इन सब बीमारियों के साथ अगर आप वज़न ज़्यादा लेके चल रहे हैं तो आपको एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अगर फिजिशियन आपको एडवाइस करता है कि नहीं, आपको एक सर्जिकल एडवाइस भी लेना चाहिए, तो आपको एक जो बेरेट्रिक सर्जन्स होते हैं, मेटाबॉलिक सर्जन्स होते हैं, उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए। वो आपकी मदद कर पाएंगे कि किस तरीके से, क्या तरीका आपके लिए बेहतर है आपको वजन कम करने का।
1: जी, जोया हमें लिख रही हैं, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे कार्यक्रम सुन रही हैं, और ये लिख रही हैं कि क्या मैदा, जैसे हमें पता है, इन्होंने लिखा है मैदा इज़ वेरी नॉट गुड फॉर आर हेल्थ एंड स्टमक, बट वी ईट आउटसाइड फूड एंड इन मोस्ट ऑफ द फूड मैदा एंड सार डो इज़ यूज्ड, हाउ डज़ इट इम्पैक्ट आर हेल्थ एंड कैन वी गो फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी? डॉक्टर निखिल
2: देखिए, एक तो जोया जी ने अपना वेट और हाइट मेंशन नहीं
1: जी
2: करी है,
1: जी
2: तो अभी हम ये नहीं बता पाएंगे।
1: इन्फॉर्मेशन ही
2: हाँ,
1: चाहिए उनको
2: इन्फॉर्मेशन।
1: जी
2: अच्छा, जो बात करी इन्होंने मैदा की है इस तरह की, तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि खाना जितना प्रोसेस्ड हम जितना करते हैं, यानी कि वी आर मेकिंग इट मोर एंड मोर सिंथेटिक, उसमें नेचुरल कम हो रहा है और सिंथेटिक वो ज़्यादा होता जा रहा है, तो उतना ही ख़राब होता जा रहा है, उससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता जा रहा है और जो हार्मफुल एलिमेंट्स उसमें ऐड हो रहे हैं, इसीलिए मैदा को जो है सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो जब जोया जी को ये सारी बातें पता भी हैं, तो ज़रूर इनको अपने खाने पीने में मैदा की मात्रा कम रखनी चाहिए, और आटा का मात्रा है जो हम जिसको हम नेचुरल खाना अपना कहते हैं वो लें, और एक्सरसाइज, योगा, किसी भी फॉर्म में जो है वो
1: जी
2: इनको अपना वेट मेंटेन करने में मदद करेगा।
1: जी क्योंकि हम कार्यक्रम ओबेसिटी पे कर रहे हैं, तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाह रहे हैं कि खान पान में क्या सही है क्या गलत, और ये हमें लिखकर भेजा है हमारे रेगुलर लिसनर है नरदेव सिंह चौहान जी, कोटद्वार उत्तराखंड में रहते हैं। इन्होंने लिखा है, शालिनी मैम, डॉक्टर निखिल और डॉक्टर खेतान को गुड आफ्टरनून। मैम, मोटापे की बात कर रहे हैं, पहले का खान पान और आज के खान पान, उसका जो फ़र्क हुआ है उसके कारण भी मोटापा बढ़ रहा है क्या? तो हम इस पे भी बात कर लें थोड़ी सी, वैसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास कि मोटापा बढ़ क्यों रहा है, क्या खान पान मेजर रोल प्ले कर रहा है
0: देखिए,
1: इसमें?
0: इसमें खान पान और हमारा लाइफस्टाइल दोनों चीज़ ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। खान पान जो पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि खान पान पहले हमारा नेचुरल खाना ज़्यादा था, है ना, अभी हमारा जैसे डॉक्टर निखिल ने कहा कि प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी है। पहले हमारे खान पान के लिए हमें जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फूड के प्लेटफॉर्म पे घर बैठे खाना मंगा लेता हूँ, तो मेरे लिए इजी एक्सेस ऑफ फूड हो गई, एबंडेंस ऑफ फूड भी हो गया, इजी एक्सेस ऑफ फूड भी हो गया और प्रोसेस्ड फूड भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी फूड की तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही हैं वज़न में। जैसे पहले के ज़माने में हम ये मैदा, सूजी, ये सब चीज़ें कम होती थी, आटा, चावल, ये खाना, सब्जी, तीन तरीके की सब्जियां, रोटी, चावल, हमारी प्लेट रेनबो जैसी कलरफुल दिखती थी। अब हमारी प्लेट जो है वो सिंगल कलर की होती है, तो अगर रेनबो जैसी प्लेट दिखेगी हमारी तो वो न्यूट्रिशियस खाना है। अगर हमारे खाने में एक या दो कलर की चीज़ें दिख रही हैं वो हमारा न्यूट्रिशियस नहीं है। जैसे वाइट्स जो होते हैं ना, हमें वाइट्स जो भी खाने में चीज़ें, सूजी, मैटा, आदा, चावल, या हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो बहुत सारे ठीक है, हेल्थ के लिए एवरेज चीज़ें हैं, बट वो न्यूट्रिशंस नहीं है इतने। तो न्यूट्रिशंस चीज़ें हैं, जितनी कलरफुल होंगी उतनी न्यूट्रिशन, सबकी अपनी डिफरेंट न्यूट्रिशंस वैल्यू है अगर हम वो कलर्ड फूड खा रहे हैं तो। अगर हम वाइट फूड खा रहे हैं तो उनकी सबकी मोर और लेस कॉमन न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, पहले इनसे बात करते हैं, फिर और कुछ बातें हैं आपसे इससे संबंधित पूछने की। हेलो
3: हेलो,
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, नाम बताएं।
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार,
3: मेरा नाम अमन कुमार है सर, मैं गांव कुकुनी चाची इंद्रनाथ से हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी बताएं, क्या पूछना है आपको?
3: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोटापे कम करने के लिए कौन सा योगा या प्राणायाम सबसे लाभदायक है?
1: देखिए, आज हम योगा या प्राणायाम पे तो बात नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ, ये भी वेट लॉस कर सकते हैं अगर आप इसको नियमित दिनचर्या में शामिल करते हैं, एक्सरसाइज को या योग को, पर यहाँ पर हम बात आज बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कर रहे हैं और ये सर्जरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है इस पर कर रहे हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे अब वेट लॉस की जब हम बात कर रहे हैं, हम खान पान की बात कर रहे हैं, तो क्या जब ये सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी खान पान पे ध्यान रखना पड़ता है? जैसे कुछ लोग इस तरह की थिंकिंग से आते हैं कि वेट लॉस हो गया, अब तो सर्जरी हो गई, अब हम कुछ भी खा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: देखिए, ज़रूर, जैसा हम पिछले आधे एक घंटे से बात करते हुए आ रहे हैं कि वज़न

0: खत्म करने के लिए जो मुख्य हमारा फोकस होना चाहिए वो तो खाने पीने की आदतों पर और एक्सरसाइज पे ही होना चाहिए। बेरियाट्रिक सर्जरी हम उसी मरीज़ को ऑफर कर रहे हैं जो ये सब ट्राई करके भी एडिक्वेट वेट लॉस अचीव नहीं कर पा रहा और साथ में वो मोटापे की वजह से और बहुत बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। इस सर्जरी से हम उसका वज़न एक बार आइडियल कैटेगरी में ले आते हैं जितना उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन अब उसको मेंटेन करने के
1: तो
0: लिए वही
1: उसको
0: दो चीज़ें जिसकी हमने शुरू में बात करी थी,
1: जी
0: यानी कि खाने पीने की आदत और एक्सरसाइज, यानी कि वो तो करनी ही करनी है।
1: जी
0: अगर कोई भी मरीज सोचे कि सर्जरी शॉर्टकट है कि मैं खाने पीने में परहेज नहीं कर सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर
1: जी
0: सकता, मैं सर्जरी करा लेता हूँ और बाकी मैं ऐसे ही करता रहूँगा, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नहीं, मरीज़ का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना वेट लॉस को मेंटेन रखने के लिए, दोबारा कह रहा हूँ मैं, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज,
1: यानी ये सर्जरी एक बार हो गई, अगर
0: सर्जरी उनका
1: आपने
0: रिप्लेसमेंट नहीं है।
1: फॉलो नहीं किया तो
0: बिल्कुल
1: आप वापस वेट गेन कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: बिल्कुल, इनफैक्ट
1: ये।
0: वेट रीगेन जो होता है ऑपरेशन के बाद 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, वो मुख्य इन्हीं वजहों से होता है कि मरीज मोटिवेटेड नहीं होता, खाने पीने की आदत में बदलाव नहीं कर पाता, एक्सरसाइज व्यायाम का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता, और यही मरीज जो है वो वेट रीगेन लेकर आते हैं।
1: तो डॉक्टर मुकुंद, मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि फॉलो अप का क्या महत्व है, कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा दोबारा से वेट गेन हो सकता है, तो कितना फ्रीक्वेंटली उन्हें डॉक्टर से इन टच रहना पड़ता
2: देखिए,
1: है?
2: जैसे हम डाइट की बात कर रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, तो कुछ डेफिनेटली डाइट प्लान होता है हमारा, और उस डाइट प्लान और आपकी आगे की जर्नी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप और मैं मिलकर, आपकी या मेरी एक्सपेक्टेशन अलग नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन हमारी खरी उतरे उसके लिए हमें रेगुलर फॉलोअप ज़रूरी है। जैसे किसी भी ऑपरेशन के बाद हम 7 से 10 दिन के अंदर मरीज़ को पहले फॉलोअप के लिए बुलाते हैं देखने के लिए कि उनकी हेल्थ सेहत सही है कि नहीं। उस वक्त हमारा टारगेट वेट लॉस नहीं होता कि कितना वेट हुआ, फिर हम पहले महीने पर बुलाते हैं, फिर पहले 1 साल हम उसको 3-3 महीने के अंतराल पर बुलाते हैं। कुछ जांचें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपको कुछ बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं तो उन बीमारियों से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ रेगुलर टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि आप में कोई न्यूट्रिशनल की कमी तो नहीं हो रही या प्रोटीन्स की कमी तो नहीं हो रही, उनके लिए कुछ टेस्ट कराते हैं और एक फिजिकल चेकअप होता है। और साथ में आपका कॉम्प्लायंस, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेशेंट कॉम्प्लायंस ज़रूरी है, अगर आप अपनी डाइट एक्सरसाइज या सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले गए। आपको वेट लॉस तो मिलेगा बट डिजायरेबल नहीं मिलेगा, जितना आप चाहते हैं उतना भी नहीं मिलेगा और वो सस्टेन भी नहीं रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म जो हमारा वेट लॉस मेंटेनेंस था वो भी हमारा हो सकता है पूरा ना रहे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पहले 5 साल हमें एनिवर्सरी जैसे मनानी चाहिए पेशेंट को फर्स्ट ईयर के बाद, कि एटलीस्ट साल में एक बार जो अपने डॉक्टर हैं उनको हम कंसल्ट करें, उनसे एडवाइस लें और समझें कि हमारी जो जर्नी है वो ठीक चल रही है कि नहीं, हम वेट रीगेन की साइड तो नहीं है। कई बार कुछ मरीज़ हैं जिनको न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हो जाती है, वो अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले जाते हैं कि हम चाह रहे थे 40 किलो वज़न कम हो, वज़न तो 40 किलो कम हो गया बट न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज हो गई जिनकी वजह से वो कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो उन सबको भी मेडिकल एडवाइस या मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है, तो उनको भी फॉलोअप ज़रूरी होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत बेसिक प्रश्न है, अभी तक हमने बात नहीं की है, कि आपके पास लोग आते होंगे और बोलते होंगे रैंडमली कि मुझे इतना इतना कम करना है या उतना कम करना है, एक्चुअली कितना कम किया जाता है, इसका भी कोई कैलकुलेशन होता है क्या डॉक्टर निखिल?
0: देखिए, जैसा कि बताया हमने कि हाइट के हिसाब
1: मतलब
0: से एक
1: मैक्सिमम
0: आइडियल,
1: कितना सर्जरी में कम किया जा सकता है वेट,
0: ये देखा जाता है। इसके लिए जो टर्म है वो है एक्सेसिव वेट, या कितना वेट उसका ज़्यादा है उसके
1: अच्छा
0: आइडल वेट से, और फिर हम टारगेट करते हैं कि उसका कितना वेट लॉस हम चाह रहे हैं। उसका हम कहते हैं अगर 75% ऑफ द एक्सेसिव वेट अगर वो पेशेंट लूज़ कर ले तो कहते हैं कि उसने एडिक्वेट वेट लॉस अचीव कर लिया है। अब उसके लिए डिपेंड करता है कि फिर कितना वो हमारा टारगेट कितना आ रहा है, पेशेंट को 20 किलो लूज़ करना है या 40 किलो करना है या 50 किलो करना है, वो डिसाइड करता है हम कौन सी सर्जरी के लिए जा रहे हैं। जैसा बाईपास सर्जरी की हम बात कर रहे थे, अगर मरीज़ को जितना ज़्यादा वेट लूज़ करना है तो उसका बाईपास उतना ही हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, इसीलिए जैसे हम टीम की बात कर रहे थे कि होलिस्टिक अप्रोच, पेशेंट के साथ बैठकर बात की जाती है कि आपका वेट इतना होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, और है ये इतना इतना वेट हम लूज़ करना चाह रहे हैं और उसके लिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं।
1: जी, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो फटाफट कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारे नंबर्स में जल्दी जल्दी बता रही हूँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर हम फ़ोन करना चाहते हैं 234

0: आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हमने काफ़ी सारी बात की है बैरियाटिक सर्जरी प्रोस एंड कॉन्स पर अभी भी बहुत सारी बातें मन में हैं, क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर मुकुंद, कि अगर सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी आपने कहा है कि ये खतरा रहता है कि वेट रीगेन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या कर सकता है?
1: देखिए, जैसे हमने कहा तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि वेट रिगेन का कारण क्या है। तो ये एक दो पहिए की साइकिल है। हमारा जो सर्जरी हमने कर दी वो एक पहिया है कि वो ऑपरेशन हो गया और आपको एक डिज़ायरेबल वेट, यानी जो हमें एक वेट चाहिए था, एक्सेस वेट का जो एक परसेंटेज वेट लॉस है वो हमें मिल गया। अब हमें दूसरे पहिया अपना चलाना है। तो साइकिल का जब दूसरा पहिया चलेगा मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो ये एक इजी वे आउट नहीं है कि हम कहें कि मैंने सर्जरी करा ली और मेरा वेट लॉस हो गया, अब मैं वेट मेंटेन होता रहेगा और मैं कुछ भी खाता पीता रहूं। तो आपके अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा एक दैनिक दिनचर्या

0: को, चाहे वो खान पीन का हो, चाहे हमारी एक्सरसाइज का हो, बनाना पड़ेगा। अगर हमें एक्सेसिव वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है, तो उसके लिए ही जो फॉलोअप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम रेगुलर फॉलोअप में होते हैं तो हम उसके कारण को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए आप किसी कारणवश आप रेगुलर फॉलोअप में नहीं रहे और आप 5 साल बाद अब आप देखते हो कि आपका 50 किलो वजन की कम हुआ था और अब 25-30 किलो वजन बढ़ गया है, तो डेफिनेटली यू अगेन हैव टू गो टू दी कंसर्न सर्जन जिससे उसे आपने ऑपरेट कराया है। और वो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेट रीगेन के बाद भी सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन होती है, आज की तारीख में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा मेडिसिंस भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं। तो जैसे हमने पहले भी शुरुआत में डिस्कस करा था कि होलिस्टिक अप्रोच
1: जी
0: लेकर के भी हम ये वेट लॉस को दोबारा अटेन कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ा आपने बताया, रीज़न खान पान बताया, लेकिन बच्चे आजकल बहुत ओवरवेट हो रहे हैं, तो डॉक्टर निखिल ये बताइए कि क्या सिर्फ खान पान लाइफस्टाइल ही इसके लिए दोषी हम माने, या कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल, खाने पीने के अलावा आजकल स्टडीज़ में ये देखा गया है कि काफ़ी सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। और इसीलिए हम देखें कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में, मतलब इवन 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ये बीमारी पाई जा रही है। इसमें एक वजह ये ज़रूर है, जैसे बात की थी हमने खाने पीने के बारे में, प्रोसेस्ड फूड, मैदा, जंक फूड, ये सब की भी इसका भी मात्रा इस्तेमाल बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, लेकिन जेनेटिक्स भी अपना रोल प्ले कर रही है। इसलिए हमने देखा है कि पूरा का पूरा खानदान, पूरी फैमिली में ही, पिता भी, दादा भी और बेटा
1: जी
0: बेटी
1: जी
0: भी,
1: जी
0: सबके सब इससे ग्रसित हैं।
1: जी बिल्कुल। तो अब इतना ही समय है कि मैं अपने धन्यवाद दूं अपने आज के गेस्ट को, और आपको बता दूं कि आज हमने ढेर सारी बातें की बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में। हमारे साथ रहे डॉक्टर निखिल गुप्ता, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, एसोसिएट डीन अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर मुकुंद खेतान, को चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एक्सेस बैरियाट्रिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों यहाँ आए, समय निकाल कर इस विषय पर ढेर सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे कार्यक्रम की प्रस्तुत कर

0: प्यार करे, इसीलिए तो।
1: क्या बात है, बुरे काम का बुरा नतीजा। मतलब कि अजकल इस गल ते लोकी बिलीव करदे ने, नहीं करदे ते करना चाहिदा, क्योंकि कुदरत दा है नियम है, जिन्हों से कहने हैं टिट फॉर टैट, है ना। ते तुसी ओ चंगे कर्म करोगे ते चंगा नतीजा मिलेगा। दे दे नवे अगले दोस्त कौन ने। हैलो
2: जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन साहब गल कर रहे ने।
2: मैं जी पिंड की रातोरिशपाल बोल रहा हूं।

0: मैं, क्या सच में ऐसा कोई इंसान है जिसने पाप ना किया हो? क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपने कभी पाप ना किया हो? जाने अनजाने में सबसे पाप हो जाता है, पर असल इंसान, सच्चा इंसान वही है जो उसको माने और उसको ठीक करने की कोशिश करे। जी हाँ, ये थी ज्ञान की बात। मतलब मेरे दोस्त हैं, उनके पापा का नाम है, वो बातें करते हैं, तो ये थी उनकी बात, यानी कि ज्ञान की बात। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है, हेलो जलंधर ते देते हैं भाई, केड़े दो जुड़े ने। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, सत श्री अकाल जी, कौन साहब जुड़े ने?
1: मैं अमृतसर तो बोल रहा, संदीप सिंह।
0: संदीप जी, की हाल चाल?
1: ठीक ठाक।
0: सदियां बाद गल कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी,
0: सदियां बाद गल कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी।
0: कि पहली बार मिली है थोड़ी कॉल?
1: नहीं, पहले मिली है, सब तक हो गया गल।
0: मेरे ना गल कितनी बाबा चेर होगी तेरे ना, है ना?
1: थोड़े नाल से मेरे काफी देर हो।
0: हाँ संदीप जी, की हाल चाल? ठीक ठाक हो? अमृतसर जी की हाल ने, मौसम दे, गर्मी दे?
1: गर्मी पूरी है,
0: गर्मी पूरी है। ठीक है संदीप जी, तुसी काम काज की करते हो?
1: मैं जी चिन्नी रंग।
0: हाँ चिन्नी रंग दे दलारी है मेरी, है ना? ठीक है संदीप जी, आज गाना कहना सुनना चाहोगे?
1: गाना सुना दो, मदन मद्दी दा।
0: मदन मद्दी दा, क्या बात है, केड़ा गाना?
1: तेरा नाम।

0: ऑल्सो गुड योर गट हेल्थ, लेकिन इसके नाल भी मैं एक प्रीकॉशन देना चाहवागी चिया सीड्स से सब्जा सीड्स की जी तुम मैं गल दसी हो तुम कोई भी यूथ इस लै रहा है इसके नाल नाल सानू पानी की बहुत ज्यादा मात्रा पीने की लड़ है क्योंकि ये अंदर इंटेस्टाइन दे जाके अंदर फूलता है और कितने ना कितने तुहानू ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है। सो इसके नाल पानी पीना बहुत जरूरी है ते तुहानू 2 से 3 लीटर पानी जरूर लेना चाहिए जे तुसी इसनू कंज्यूम कर रहे हो।
1: ते डॉक्टर नवजोत पानी की तुसी गल कीती क्वांटिटी की भी गल कीती ते कई लोग जो है ना वो ये कोशिश करते 2 लीटर पानी मैं एक बारी चक जावा ते की ये चीज सही है कि गलत है।
0: जी नहीं है बिल्कुल गलत है। सानू हाइड्रेशन मेंटेन करने वास्ते दिन में विच 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिदा आ
2: जी। ते पानी दी बजाय कई लोग जो ने ना जिवें कि अज दा यूथ वी है ओ कोल्ड ड्रिंक्स नू ज्यादा प्रेफर करदा है, उहनां नू लगदा है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है ओ साडी प्यास मिटा देणगे, ते इस बारे तुहाडा की कहना कि ओ सच्ची अंदर ठंडक पैदा करदे ने?
0: जी नहीं देखो जी कोल्ड ड्रिंक्स हो गया ए अगेन ताडे मुंह दा स्वाद कोल्ड ड्रिंक्स ठीक है, लेकिन ए इदां दा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तुसी नॉर्मल पानी लो ठीक है, उस तों ही अपनी क्वांटिटी 2 से 3 लीटर रखो। कोल्ड ड्रिंक इज जस्ट फॉर योर फन, दैट्स नथिंग, इट्स गुड फॉर नथिंग
2: जी। ते जे कोई अपना वेट लॉस करना चाहता हो गर्मी दे विच ते उस दे लई बेस्ट डाइट की होनी चाहिए है?
0: जी वेट लॉस करने वास्ते जिवें मैं तुहानू पहला दस चुकी हाँ प्रोटीन कार्ब्स ते जिहड़े अपने फैट आ दोनों ही वधिया अमाउंट दे तीनों चीजा वधिया अमाउंट च होनिया चाहीदिया ना, इनकलूडिंग फ्रूट्स वेजिटेबल सीजनल चीजा होनिया चाहीदिया ट्रेडिशनल चीजा होनिया चाहीदिया आ वेट लॉस करने वास्ते। कैलरीज इन कैलरीज आउट इनकलूडिंग तुहाडी एक्सरसाइज रूटीन, सो ये 2 चीजा बहुत ज्यादा जरूरी है वेट लॉस करने वास्ते।
1: डॉक्टर नवजोत जी मैं जल्दी जल्दी से तुहाडे तो पुछा की बेस्ट 5 ब्रेकफास्ट ऑप्शंस रहणगे समर्स दे विच ते ओ केड़े होणगे?
0: जी समर्स दे विच ताडे स्मूदीज तुसी लै सकदे हो, फ्रूट स्मूदीज लै सकदे हो, तुसी इडली सांभर लै सकदे हो, दही चावल लै सकदे हो, तुसी घर दा बणिया होया कोई भी ब्रेकफास्ट लै सकदे हो, ओट मिल्क लै सकदे हो, लेकिन अगेन वो स्पाइसी ना होवे। जे तुहाडा वो चीजा ब्रेकफास्ट स्पाइसी है इट कैन ऑल्सो कॉज एसिडिटी, एसिड रिफ्लैक्स वर्गिया तुहानू प्रॉब्लम्स आ सकदियां आ। सो जिहड़ा ब्रेकफास्ट आ वो थोड़ा इदां दा होना चाहीदा आ जिवें प्रीबायोटिक्स दे नाल रिच होवे, प्रोबायोटिक्स दे नाल रिच होवे। सो दैट्स इट।
1: ते गर्मियां दे विच डॉक्टर नवजोत इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ए किन्नी की सही है क्योंकि ए भी आज दे यूथ दे विच बहुत पॉपुलर होंदी जा रही है?
0: जी अगेन इंटरमिटेंट फास्टिंग दा सोशल मीडिया तो देख देख के बहुत ही हाइप हो रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन अगेन एक शॉर्ट टर्म तरीका है वेट लॉस करने वास्ते या होर किसी हेल्थ नु हेल्थ कॉन्शियस वास्ते, ये लॉन्ग टर्म चीजा नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक कोई इहदे विच की हुंदा है कि तुहानू इन्ने कुछ विंडोज दित्तियां हुंदियां कि तुसीं इस विंडो दौरान खाना है और इन्ने दौरान तुसीं नहीं खाना लिक्विड लेना, लेकिन अगेन ये चीजा लॉन्ग टर्म लई रन नहीं करदियां। लॉन्ग टर्म लई चीजा उही रन करदियां आ कैलरीज इन कैलरीज आउट, दैट इज
2: वर्कआउट तो पहला की खाना चाहिए तो उस तो बाद की खाना चाहिए?
0: जी वर्कआउट तो पहला तुसी प्री वर्कआउट मील ले सकते हो। एज अ डाइटिशियन मैं सुजेस्ट करांगी यू कैन टेक 1 बनाना विद ड्राई फ्रूट्स, एप्पल ले सकते हो अगेन विद ड्राई फ्रूट्स, कोई भी स्मूदी ले सकते हो, बॉइल्ड एग ले सकते हो। सो दिस इज द कॉमन प्री वर्कआउट मील।
1: तो डॉक्टर नवजोत हुण जांदे जांदे ना मैं अपना परसनल सवाल पूछना चाहता हाँ क्योंकि मैनू गर्मियों के विच ये दिक्कत बहुत आती है कि मेरे तो आइसक्रीम खाते बिना बिल्कुल नहीं रहा जाता, तो आइसक्रीम मैं लगता है गर्मियों से सही है नहीं, तो की ऑल्टरनेटिव है साढ़े को?
0: देखो जी आइसक्रीम गर्मिया का एक बहुत ही फन कह लो कि गर्मिया च हर कोई इस नु पसंद करता आइसक्रीम होवे। आइसक्रीम तो इलावा तुसी घर च शेक बना के पी सकते हो, मैंगो शेक पी सकते हो, तुसी कोई स्मूदी बना के पी सकते हो, जे तुसी आइसक्रीम नहीं खाना तुसी फ्रूट कस्टर्ड ले सकते हो। सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन।
1: ते फ्रूट कस्टर्ड वाल मैनू रुझान करना पेगा फिर गर्मिया दे विच?
0: जी बिल्कुल।
1: ते जे हुण फ्रूट्स की गल करिए ते भूमि जो है ना साड़ी जो साड़े नाल है ए मैंगोज की बहुत शौकीन है ते ए मैनूं लगदा है 5-6 तो घट खांदी नहीं हैगी।
2: जी ते इसका की साडे ते प्रभाव पैंदा? कई कहंदे ने कि इस दे नाल ना पिंपल्स निकल आंदे जे असीं गर्मी दे विच ज़्यादा खांदे आ, ते की ये सच है जे असीं ज़्यादा मैंगो खांदे आ जिहड़े मैंगो लवर्स ने ते उहनां दे लई तुसीं की कहना चाहोगे?
0: ये बिल्कुल सच है कि फीवर मैंगो दे नाल बहुत सारिआं नूं गर्मी हो जांदी आ। सो

0: सोच रहे हो ये पहला वर्ग ही होएगा तो तुझसे बिल्कुल गलत हो। इस बार फुटबॉल का रोमांच डबल नहीं ट्रिपल होने जा रहा है। सब तो पहली ते वड्डी खबर है कि इस बार एक जा दो नहीं बल्कि पूरे 3 मुल्क मिलके इस मेले नु सजा रहे ने।
1: जी दोस्तों, अमरीका, कैनेडा ते मैक्सिको ए तीनों मुल्क मिलके इस मेले नु सजाणगे। 16 चमकदे स्टेडियमां विच दुनिया भर दे स्टार खिडारी आमो सामने होणगे। ते सुनो असली धमाका, इतिहास विच पहली वार टूर्नामेंट विच 32 नहीं बल्कि 48 टीमां हिस्सा लैणगियां। मतलब हुण छोटे देशां तो लैके वड्डे देश हर देश दे सुपने होणगे हकीकत।
0: ते दोस्तों इस दे नाल ही होर खबरां लैके आवांगे, पर उस तो पहला एक प्यारा जिहा गीत सुन लैंदे आ ते गीत तो बाद होर गल्लां भी करांगे।
1: ते गीत जदों असीं सुना रहे ते असीं कह रहे हैं कि गीत दी कर लो जी फुल वॉल्यूम, क्योंकि गीत भी है जी फुल वॉल्यूम नीरज श्रीधर दी आवाज़ दे विच। ते इंजॉय करो ते फिर मिलदे हैं होर अपडेट्स दे नाल।
2: प्यार तेरा प्यार मुझे खींचे।

लो भाई फुटबॉल दे दीवानियों अपनी सीट बेल्टा कस लियो क्योंकि खेड़ा दी दुनिया दा सब तो वड्डा महाकुंभ यानी फीफा विश्व कप 2026 हुण तक दे सारे रिकॉर्ड तोड़न लई पूरी तरह तैयार है जे तुसी

जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के 6:03 50 सेकंड हो चुके हैं, FM रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी, जिसका नाम है जी, हाय तुहानू प्रोग्राम का नाम तो पता ही है ना, है ना, जिहड़ा हर शाम रोज़ 6 बजे तड़ तक पहुँच जाता है, प्यार भरियां गल्लां करता होया, जिंदगी नूं प्यार करना सिखाता, जिंदगी नूं एक एक चीज़ दसदा कि हाँ किवें रोज़ मोटिवेट होना है, किवें तुसीं जिंदगी नूं प्यार करना है, तो किवें जिंदगी नूं कहना है कि हाय मेरी जिंदगी लव यू।

ट्रक भर के, जी हाँ लव यू जिंदगी। सो लव यू जिंदगी दे विच एक बार फिर वखरियां गल्लां वखरियां मोटिवेशन दीआं चीज़ां लैके तुहाडे सामने रूबरू हो चुके हैं। मैं तुहाडा दोस्त मोहित रूबल ते प्यार जिहड़ा है असी नो डाउट लभण दी कोशिश करदे हाँ कि बई सानू प्यार करन वाला मिल जाए, सानू जिंदगी दा प्यार मिल जाए जिन्ना असी मुहब्बत कर सकीए जिंदगी बिता सकीए। पर असल प्यार जिहड़ा है अगर असी अपने आप नू अपनी रूह नू करना शुरू कर देवांगे कि चीज़ लई ग्रेटफुल थैंकफुल होना शुरू कर देवांगे, उस तो ज़्यादा सोहनी रीस जिहड़ी है वह नहीं हो सकती। सो अज दा प्रोग्राम ज़्यादा इसी गल ते रहेगा कि तुसी अपनी किवें एक एक चीज़ लई मैं कहांगा कि ग्रेटफुल होवो थैंकफुल होवो एंड एक एक चीज़ लई प्यार करो। सो इदा ही चीज़ा गिनाते हुए कि चीज़ बहुत खूबसूरत है तो कि चीज़ लिए तुसी खुश रहना है। पहला गाना भी जिहड़ा है मैं उस तरीके का लभ्या है। सो आओ इस गाने नू एंजॉय करते हैं।

जी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच। सो इस प्रोग्राम दे विच हुण अगली एक नवी कहानी जिहड़ी है मैं तुहानू सुनाउण जा रहा। तुसीं शायद कदी आप सोचिया भी नहीं होएगा, वैसे शायद किसी ने भी नहीं सोचा होएगा कि भारत दे मद्रास दे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कि जो पूरी दुनिया ते राज करेगा, वर्ड सही रहेगा, या पूरी दुनिया नू टेक्निकली कंट्रोल करेगा, शायद वो वर्ड सही रहेगा, या फिर लोगों नू डिजिटली बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा, या फिर कह लो कि मतलब अल्टीमेट पावर है वो बंदे को, मनो चाहे ना मनो। तुसी कहोगे किहदी गल कर रहा है जना, मैं गल कर रहा चेन्नई दे एक छोटे जे दो कमरिया वाले घर दे विच पैदा होए सुंदर पिचाई दी। सुंदर पिंचाई बोल लो, थोड़ा साउथ इंडियन थोड़े नाम, थोड़े सुंदर पिचाई है ना, शायद यही नाम सही है। हाँ, सुंदर पिचाई, जिन्हां दे परिवार दे कोल इत्थे एक प्रोपर रिसोर्सिस भी नहीं सन, पर फिर भी उन्होंने अपने बेटे ते चंगी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने पढ़ाई दे लई। एंड देखो इस वक्त ओ गूगल जिहड़ा कि हर दूसरा बंदा यूज़ कर रहा, हर दूसरा कि हर सारे ही बंदे ही यूज़ कर रहे हैं, जिन्ने बंदे धरती दे ने ओ सारे ही गूगल यूज़ कर रहे हैं। तो उस दे CEO सब तो वड्डा ओदा गूगल दा सुंदर पिचाई ओ सारा कंट्रोल कर रहे हैं, एंड साढ़े भारत का किड्डा वड्डा नाम जिहड़ा है वह रोशन किया है। तो इस वक्त बहुत सारे जिहड़े भारतीय ने वो नौकरी लभण की कोशिश करते हैं कि गूगल दे विच जॉब मिल जाए, एंड बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। गूगल हो गया या होर भी वड्डी वड्डी कंपनीज हो गई, मैटा या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने, पर उन्होंने भी उपर टॉप ते जाना यानी कि कुछ भी सोचो, कुछ भी मेहनत करो तो व्यर्थ तो नहीं जाती ना। बस डिपेंड करता है कि तुसी कितनी बारी हारे हो तो कितनी

जी हाँ दोस्तों, इंजॉय कर रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी। एंड जिन्हें कि मैं मोटिवेशनल तुहानू कहानियां सुना चुके हैं, कहानियां नहीं ए असल जिंदगी दियां स्टोरीज ने, असल वाकये ने जो तुहाडे नाल मैं शेयर कर रहा हैं ते तुहानू मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हैं, क्योंकि अक्सर असीं भी इंसान हाँ, मैं भी, तुसीं सारे इंसान हाँ, ते अक्सर हुंदा है कि असीं कुछ भी कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर नहीं मुकम्मल हो रही जां साडे अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो असीं झट जिहड़े आ नैगेटिव हो जांदे हां ते सोचण लग पैंदे कि नहीं यार इस तों बाद नहीं होणा। पर किन्ने सारे लोग ने जिहड़े साडे आले दुआले ने जिन्हां तों असीं बहुत सारी मोटिवेशन जिहड़ी है ओह लै सकदे हां। जिवें अगली कहानी या अगले असल स्टोरी जिहड़ी है

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रोग्राम फिल्मी दुनिया लेके थोड़ा दोस्त आरजे ललित सोनी हाजिर हो चुके हैं जनाब स्टूडियो कड़ी ते इस वक्त समय 7:03:31 हो रहे ने ते प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच गल्लां हुंदियां ने बॉलीवुड बॉलीवुड जगत दियां खास शख्सियतां दी जिंदगी ते आधारित गल करदे आं हिंदी ते पंजाबी सिनेमा जगत दे नाल जुड़ियां दिलचस्प गल्लां बातां ते प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच बहुत सारियां गल्लां बातां होणगियां और सब तो पहला मैं दस दा कि मेरा ते थोड़ा साथ बनिया रहेगा ठीक 11 बजे तक 7 तो लेके 8 बजे तक प्रोग्राम होएगा फिल्मी दुनिया और 8 तो लेके 9 बजे तक प्रोग्राम रंगला पंजाब और ठीक 9 तो 10 बजे तक होएगा दिल चाहता है जिथे तुसी अपनी प्यारियां प्यारियां फरमाइशां भेज सकते हो 10 बजे होएगा प्रोग्राम शामी गजल और 10:30 बजे होएगा एक प्यार का नगमा है।

इस फिल्म दे विच जिहड़ा संगीत दिता गया उसने रिकॉर्ड तोड़ दिते और इस फिल्म ने सफलता दे नवे रिकॉर्ड कायम किए और इस फिल्म दे राही वसंत देसाई जी नूं एक संगीतकार दे तौर ते एक वक्री पछाण मिली और उस तो बाद वी शांता राम ते वसंत देसाई दी जोड़ी ने भारतीय सिनेमा दे सब तो सफल जोड़ियां दे विचों एक गिनी जान लगी। दोनों ने बहुत समा बहुत चिर फिल्मां दे विच काम कीता और एक तो बाद एक हिट फिल्मां दित्तियां और हिट संगीत दित्ता।

सब तो सफल जोड़ियां दे विच्चों एक गिनी जान लगी। दोनों ने बहुत समा बहुत चिर फिल्मों दे विच काम किया और एक तो बाद एक हिट फिल्मां दित्तियां और हिट संगीत दिता। ए सी वसंत देसाई दे संगीत दा जादू।

बसंत देसाई जी दे संगीत दी सब तो वड्डी खासियत ए सी कि ओ भारतीय संगीत अते लोक धुनां नूं फिल्मी संगीत विच बड़ी बखूबी दे नाल पिरोना जानदे सन। ते उन्हां ने झनक झनक पायल बाजे दे गीत तोड़ो पिया नैनो से नैन ना ही मिलाओ जिहड़ा कि तुसीं गीत हुणे सुनिया, और इस बाद गूंज उठी शहनाई तेरे सुर और मेरे गीत दिल का खिलौना टूट गया वर्गे हिट गीतां दे लई संगीत दिता। और फिल्म गूंज उठी शहनाई विच उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्ला खान की शहनाई तो उस्ताद अब्दुल हलीम जफर खान की सितार तो उस्ताद आमिर खान की आवाज़ का बहुत ही बखूबी तरीके दे नाल इस्तेमाल किया। आओ सुनते हैं फिल्म फिल्म शहनाई दे विच्चों तेरे सुर और मेरे गीत, एक खूबसूरत गीत और इस जिसनों की लता मंगेशकर और जी लता मंगेशकर दे नाल इन्हां दे साथी कलाकारां ने गीत गाया। आओ सुनते हैं इस गीत नूं ते मिलदे हैं इस गीत तो बाद वसंत देसाई की जिंदगी दे नाल जुड़ियां हुई होर भी दिलचस्प गल्लां बातां दे नाल।

0: ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਸੰਤ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਫਿਲਮ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਯਾਨੀ ਦਾਦਾ ਮਨੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਪ ਸਟਾਈਲ ਗੀਤ ਰੇਲ ਗਾੜੀ ਗਵਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸੰਤ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੰਤ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ
1: ਨਾਉ ਚਲੀ ਨਾਨੀ ਕੀ ਨਾਉ ਚਲੀ ਨੀਨਾ ਕੀ ਨਾਨੀ ਕੀ ਨਾਉ ਚਲੀ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਪੇ आओ चली भागो चली जागो चली ये कैसे चले लाओ पैसे चले आहा खड़े हो जाओ तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ लाइन में खड़े हो जाओ सब खड़े ला ला ला ला ला लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में तुम भी खड़ी हो जाओ जा जा जा जा जा उधर लाइन में हाँ तुम भी आओ ना
2: मेरे पास पैसा नहीं है
1: पैसे नहीं है तो चलो लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ जा पहले वो तीन फिर दूसरे तीन है तुम भी आओ पहले लाइन में चले आओ अब शुरू करते हैं एक दो
3: नाव चली नानी की नाव चली मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे सामान घर से निकाले गए नानी के घर से निकाले गए इधर से उधर से निकाले गए और नानी के नाव में डाले गए
2: क्या डाले गए
3: एक छड़ी एक घड़ी एक झाड़ू एक लाड़ू एक संदूक एक बंदूक एक तलवार एक तलवार एक घोड़े की जीन एक ढोलक एक बीन एक घोड़े की नाल एक धीवर का जाल एक लहसुन एक आलू एक तोता एक भालू एक डोरा एक डोरी एक बोरा एक बोरी एक डंडा एक झंडा एक हंडा एक अंडा एक केला एक आम एक पक्का एक कच्चा और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा फिर एक मगर ने पीछा किया नानी की नाव का पीछा किया नीना की नानी की नाव का पीछा किया से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया एक बिल्ली का बच्चा एक केला एक आम एक पक्का एक कच्चा एक अंडा एक हंडा एक झंडा एक डंडा एक बोरी एक बोरा एक डोरी एक डोरा एक तोता एक भालू एक लहसुन एक आलू एक घीवर का जाल एक घोड़े की नाल एक ढोलक एक

0: एक जीन, एक तलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
1: मगर नानी क्या कर रही थी?
0: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
1: कितनी गहरी?
0: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16:30, 15:15, दूना 30, 45, 44, 75, 76, 90, 87, 95, 80, 20, नंबर 25, गले।

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दा आनंद माण रहे हां अपने दोस्त ललित दे नाल। जी हां दोस्तों, गल कर रहे हां असद भोपाली साहब दी, मशहूर शायर गीतकार। असद भोपाली जी नूं उर्दू फारसी ते अरबी भाषा अपने पिता तो सीखी उन्होंने, और उन्होंने पढ़न लिखन दा नाल नाल शायरी दा शौक जिहड़ा है बचपन विच ही पै गया, और बचपन विच ही वह मुशायरियां विच जाके अपनियां लिखियां हुई शायरियां सुनाया करते, और लोग उन्होंने शायरी नूं बहुत पसंद करते। पर असद भोपाली जी की हसरत सी कि वह फिल्मों के लिए गीत लिखण, तो उन्होंने ये हसरत उस वक्त पूरी होंदी है जदों एक मुशायरे के दौरान फिल्म निर्माता फजली ब्रदर्स ने उन्होंने शायरी सुनी, तो बस वह असद जी की शायरी तो इन्ने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने असद जी ने 1949 आई फिल्म दुनिया के लिए बतौर गीतकार साइन कर लिया। सो इस तरह होया असद भोपाली जी दे फिल्मी करियर दा आगाज़।

जी हाँ, असद जी ने उषा खन्ना, हुसन लाल, भगत राम, सी रामचंद्र, ख्याम, धनी राम, मानस मुखर्जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, हेमंत मुखर्जी नाल भी काम किया। और 1949 तो 1990 तक अपने चार दहाकों के लंबे सफर के लंबे करियर के दौरान उन्होंने लगभग 400 तो वध फिल्मों 2000 तो वध गीत गाए, सॉरी गीत लिखे। सो असद जी का मानना है कि गीत उही कामयाब है जिसनों आम इंसान आसानी नाल गुनगुना सके। 1999 जदों फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज़ होंदी है तो उस फिल्म दी गीतां ने जड़ा है धूमा मचा दित्तियां और फिल्म बॉक्स ऑफिस से सुपर डुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म के गीत जड़े आ बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। और इस फिल्म के जड़े गीत इन्हों में कबूतर जा जा सब तो पहला गीत सुनाया गया सी। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार दे फिल्म फेयर अवार्ड के नाल असद जी नूं सम्मानित किया गया सी। हालांकि 9 जून 1990 महान शायर इस दुनिया नूं अलविदा कह

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दा आनंद माण रहे अपने दोस्त ललित दे नाल। सो वसंत देसाई असद भोपाली तो बाद अज हुण गल करांगे हिंदी सिनेमा दे उस फिल्म निर्माता निर्देशक दे एक्टर दी जिस दे जिसने सस्पेंस रोमांस संगीत अते इमोशनल्स नूं एक पर्दे ते उतार के नवा रूप दिता। गल कर रहे हैं मशहूर फिल्म निर्देशक राज खोसला जी दी। अज उन्हां दी डैथ एनिवर्सरी ते असीं उन्हां नूं याद कर रहे हैं। 31 मई 1925 नूं पंजाब दे लुधियाणा दे विच जन्मे राज खोसला दा बचपन तो ही संगीत प्रति बेहद लगाव रहा। क्लासिकल गायन की तालीम जिहड़ी आ उन्होंने हासिल की और नाल दी नाल ऑल इंडिया रेडियो दे नाल भी वो जुड़े रहे। दरअसल राज खोसला जी एक गायक बनना चाहते सन पर किस्मत उन्होंने फिल्म निर्देशन वल ले आई और इस दे लई उन्होंने दोस्त महान एक्टर देवानंद साहब ने बहुत मदद की जिन्ह करके वह बाद विच मशहूर निर्माता निर्देशक ते एक्टर गुरुदत्त दे असिस्टेंट वजो काम करते हैं और फिल्म निर्माण दीयां बरीकियां सीखते हैं और फिर 1954 दे विच उन्हां नूं मौका मिलता है फिल्म मिलाप नूं डायरैक्ट करन दा ते शुरू हुंदा है राज खोसला दा फिल्मी सफर। और उस तो बाद 1956 दे विच उन्हां नूं फिल्म सीआईडी दे निर्देशन की जिम्मेवारी मिलती है ते देव आनंद शकीला जॉनी वॉकर के एन सिंह ते वहीदा रहमान वर्गे दिग्गज कलाकारां नाल सजी एक क्राइम थ्रिलर मूवी बॉक्स ऑफिस ते सुपर डुपर हिट साबित हुंदी है और कहा जाता है कि इस फिल्म की सफलता तो खुश होकर गुरुदत्त साहब जी ने राज खोसला जी नूं एक कार भी गिफ्ट की सी। सो सुनदे हां सीआईडी फिल्म का खूबसूरत गीत ते मिलदे हां इस गीत तो बाद।

न्यू नॉर फिल्मां दी शुरुआत करन वाले राज खोसला ने 1964 दे विच मनोविज्ञानिक रहस्यां ते आधारित एक फिल्म वो कौन थी बनाई। फिल्म दे विच साधना, मनोज कुमार और प्रेम चोपड़ा वर्गे दिग्गज कलाकार नजर आए और मदन मोहन जी दे संगीत विच सजी इस फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म ने बहुत सारे अपने अवार्ड जड़े ने अपने नाम किए और इस फिल्म तो बाद राज खोसला जी नूं सस्पेंस फिल्म निर्देशक का टैग मिल गया और खास करके इस फिल्म का खूबसूरत गीत लग जा गले बहुत ज़्यादा मकबूल होया और इस गीत नूं आज भी तुसीं भी अपनी प्लेलिस्ट दे विच जरूर शामिल किया होया होना है। उस तो बाद राज खोसला ने वहीदा रहमान, साधना, आशा पारेख, मुमताज़ और नूतन वर्गियां एक्ट्रेस दे नाल काम किया और उन्होंने खास पहचान बनाई, पहचान दिलाई और इसलिए उन्होंने वूमेन डायरेक्टर भी कहा जाता सी। बहुत सारिया एक्ट्रेस की जिहड़ी आ जिंदगी उन्होंने बदल के रख दी। सीआईडी के बाद राज खोसला ने एक मुसाफिर, एक हसीना, वो कौन थी, मेरा साया, दो बदन दो रास्ते और मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे, प्रेम कहानी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दोस्ताना, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, माटी मांगे खून ते सनी समेत बहुत सारिया हिट फिल्मां दित्तियां। और इस तो इलावा गल करिए तो उन्होंने बहुत सारे वड्डे कलाकारां दे नाल काम किया जिन्हां विचों देवानंद साहब, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना समेत बहुत वड्डे दिग्गज कलाकार उन्होंने काम किया।

नमस्कार, स्टूडियो कड़ी च समा 8 बज चुके ने ते वेला हो गया इस वक्त दे न्यूज़ हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 साल दौरान देश के नौजवानों औरतों और किसानों को समर्थ बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छड्डी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दे ही दिन साल 2024 में लगातार तीजी बार भारत के प्रधानमंत्री वजों सहु चुकी सी। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी वालों पंजाब तो आम आदमी पार्टी के आगू संजीव अरोड़ा नाल संबंधित हैप्टन स्काई रियालिटी लिमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में छापेमारी की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स खेतीबाड़ी सम्मेलन अज तो मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत का संकल्प एक राष्ट्रीय वचनबद्धता है जिसलिए देश के हर नागरिक ते संस्था के सहयोग की लोड़ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विच पाकिस्तान की निखेधी करदे कहा है कि पाकिस्तान धार्मिक शब्दावली की वरतों करके भारत खिलाफ नफरत फैला रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज 31 स्टार्टअप्स ते उन्होंने संस्थापकों को 1 करोड़ रुपए तो वध दी सीड ग्रांट वंडी। पंजाब विच झोने की लुआई लई तीजा पड़ा अज तो आरंभ हो गया है। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जलंधर ते लुधियाणा तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक चलन वालियां 5 नवियां सुपर इंटीग्रल वेल वोल्वो कोच बसां नूं हरी झंडी दिखा के रवाना कीता। इस हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम रंगला पंजाब लैके थोड़ा दोस्त ललित सोनी हाजिर हो चुका है। स्टूडियो घड़ी से समा 8:04 और 19 सेकंड हो रहे ने और प्रोग्राम रंगला पंजाब पंजाब पंजाबी और पंजाबीयत दियां बातां पौंदा प्रोग्राम रंगला पंजाब पंजाबी विरसे दियां बुक्कल दे विच्चों लैके यादां लैके ओ कहानियां ओ किस्से तुहाडे नाल सांझे कीते जांदे ने जिन्हां किस्सियां कहानियां नूं पढ़ के सुन के तुहाडा बचपन बीतिया है। सभ्याचार दी बुक्कल दे विच्चों ओ छुपे हुए दिलचस्प जज्बात जिन्हां नूं महसूस किया जा सकता है अते उन्हां यादां नूं एक बारी फिर तो दोहराया

सकता है। सो प्रोग्राम रंगला पंजाब दे विच भी अज असी एक अजिहे ही विषय के बारे गलबात करांगे जिस विषय के बारे तुसी जानते हो, जिस विषय के बारे तुसी सुनिया होगा अक्सर अपने बजुर्गों तो अपने वड्डियां तो सुनिया होगा। जी हाँ, प्रोग्राम रंगला पंजाब दे विच अज असी गल करन जा रहे हाँ पंजाब के हरमन प्यारे लोक नायक की। वह लोक नायक जिस दे नां नाल अनेक दिलचस्प कहानियां जुड़िया हुई ने ते उस दी सूरबीरता परे कारनामियां नूं बहुत सारे लोग कवियां ने अपनियां वारां अते किस्सियां दे विच गाया है। जी हाँ, तुसी थोड़ा जिहा अंदाजा लगा सकते हो। चलो मैं दस ही दिना है कि अज गल करांगे लोक कथावां दे विचों लोक बीर राजा रसालू दी कथा। जी हाँ, उही राजा रसालू जो कि सियालकोट दे राजे सलवान दा पुत्तर है ते पूरन भगत दा छोटा भरा है। सो कहानी दा जिहड़ी आ आरंभ करदे आ, कहानी दी शुरुआत करदे आ वी कहानी जिहड़ी आ कित्थों शुरू हुंदी है। सो कहा जांदा है कि पूरन भगत दे वर दे नाल राजे सलवान ते राणी लूणा दे घर लोकबीर राजा रसालू का जन्म होया और उसके जन्म समय सियालकोट के बहुत खुशियां मनाई गई, पर वहमां भरमां दे विच फसे राजा सलवान नूं ज्योतिषियों ने यह कह के कह दिता कि जे वह 12 वरे तो पहला अपने पुत्र के मत्थे लगेगा तो उसके राज ते संकट आ सकता है जां फिर उसकी मौत भी हो सकती है। ये सुन के राजा सलवान जड़ा डर जाता है तो वह नव जन्मे रसालू नूं 12 वरियां दे लई भोरे विच पा के रखण दा हुकम दे दिंदा है। राणी लूणा अपने पुत्र लई रोंदी कुरलाउंदी है पर राजा सलवान उस दी इक नहीं सुणदा। सो कह सकदे हो कि वहम भरम जिहड़े ने इन्ने क भारी हो जांदे ने कि रिश्ते जिहड़े ने ओह फिक्के हो जांदे ने। सो उस समय एहो जे किस्सियां दे विच सानूं ये चीज़ां जरूर देखने को मिलदियां कि वहमां भरमां दे विच फसे हुए जिहड़े राजे ने किवें अपने औलाद दे लई अपनी आने वाली पीढ़ी दे लई किस तरह उन्होंने जिहड़ा आ मुसीबतां दे विच उन्होंने पाया और किस तरह वह लोग मुसीबतों दे विचों निकल के बहुत वड्डे मुकाम ते पहुंचे। सो गलबात करांगे लोकबीर राजा रसालू की खूबसूरत कथा दी।

जी लाल चंद यमला जट की खूबसूरत आवाज दे विच रिश्तियां दे ताने बाने नूं और रिश्तियां दी सही असलियत नूं बयान करदा होया गीत तुसी इंजॉय कीता। 102.7 FM रेनबो न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते प्रोग्राम रंगला पंजाब दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित दे नाल। प्रोग्राम रंगला पंजाब पंजाब पंजाबी और पंजाबियों दीआं बातां पाउंदा। सो अज असीं इस प्रोग्राम दे जरिए तुहाडे नाल सांझा कर रहे हां लोक बीर राजा रसालू दा किस्सा। गीत तो पहलों गल कर रहे सी कि राजे सलवान ने ज्योतिषियों के कहन ते पूर्ण वांग ही राजे रसालू नूं 12 सालां दे लई भोरे दे विच पाउण दा हुक्म दे दिता और जिस भोरे दे विच जिस महल दे विच राजा रसालू नूं रख्या जांदा है उस विच सारियां सुख सुविधावां हुंदियां ने और बहुत छोटी उम्र ही राजे रसालू नूं घोड़सवारी शस्त्र विद्या तीरअंदाजी ते तलवार चलाउण दे हुनर जड़ा है उस दे विच महारत हासिल हो जाती है और वक्री सोच का धारनी होण करके राजा रसालू 11वें साल ही उस भोरे दे विचों बाहर निकल आउंदा है। वह शिकार खेडण दे लई अपने घोड़े ते सवार होके बड़ी दूर निकल जाया करदा सी और वह लोकां नाल तरह तरह दीआं शरारतां करदा मजाक करता पर कोई भी उसनू राजे दा पुत्र समझ के कोई कुछ ना कहता। वह पानी भरन आईया मुटियारां दे कड़े गुलेलां दे नाल भनने शुरू कर दिंदा है और मुटियारां राणी लूणा दे कोल जाके शिकायतां करदियां ने। सो राजे तो डरदी हुई राणी लूणा उन्हां मुटियारां नू पित्तल ते लोहे दीआं गागरां लैके दे दिंदी है पर रसालू तीरां दे नाल उन्हां पित्तल ते लोहे दीआं गागरां विच शेक करने शुरू कर दिंदा है। रसालू दीआं शिकायतां जिहड़ियां दिनों दिन वधदियां जा रहियां सन ते इह वधदियां होईयां शिकायतां एक दिन पहुंच जांदियां ने राजे सलवान दे कन्नां तक ते इह सुण के राजा गुस्से दे विच आ जांदा है और सोचदा है कि जेकर उसदा अपना पुत्तर अपनी प्रजा दे नाल इहो जिहा सलूक करेगा ते बाकी लोग की सोचणगे। सो गुस्से विच आया राजा सलवान राजे रसालू नूं देश निकाले दा हुक्म दे दिंदा है। सो रसालू अपने दोस्तों के नाल अते फौलादी नाम के एक घोड़े ते सवार होके नवीं राहां की भाल लई तुर पैंदा है। सो इस किस्से दे विच इह भी देखण मिलदा है कि एक बच्चा जिहदा जन्म हुंदा है जन्म तो बाद उहनूं 12 साल दे लई भोरे च रख्या जांदा है और 12 साल बाद जदों उहने अपने पिता नूं मिलना हुंदा है जदों उहने उस राज भाग नूं मानना हुंदा है ते उसनू देश निकाले दा हुकम दे दिंदा है क्योंकि जिंदगी राजे रसालू को कुछ होर करवाना चाहुंदी सी इसी करके उहदी जिंदगी दीआं राहां बदल गईआं।

रसालू नूं वेख के अपनी सुध बुध गवा बैठती है। और रसालू भी सुंदरता की मूरत सौंकड़ी नूं देख के उस दे मोह दे विच कीलिया जाता है ते दोवां दा आपस दे विच प्यार पै जाता है। सौंकड़ी अपने पिता हरिचंद नूं रसालू नाल व्याह करन दे बारे कहिंदी है ते राजा हरिचंद सौंकड़ी दा व्याह रसालू दे नाल करन दे लई मन जाता है। दोवां दे चेहरियां ते बहुत खुशी आउंदी है। रसालू कुछ समा राजा हरिचंद दे महलां दे विच रहिंदा है और कदे कदे ओह शिकार खेडन चलिया जाता है। कदे दोमन नाम दे एक गभरू दे नाल चौपट खेडदा है ते बाद विच सौंकड़ी ते दोमन एक दूजे के करीब आ जाते हैं और दोनों दे आपस दे विच प्यार पै जाता है। और यह देख के राजा रसालू जड़ा आ बहुत गुस्से दे विच आ जाता है। पर बाद दे विच वह सोचता है तो सौंकड़ी का विआह दोमन दे नाल करवा के दो दिलों नूं जोड़ के अपने राहे पै जाता है।

102.7 FM रेनबो दे प्रोग्राम रंगला पंजाब दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित दे नाल पंजाब पंजाबी और पंजाबियां दीयां बातां पौंदा प्रोग्राम रंगला पंजाब। सो पंजाबी विरसे दीयां बुक्कल दे विच्चों छुपियां हुईयां कहानियां किस्से लोक वारां थोड़े नाल सांझे

रात दे ठीक 9 बज चुके ने एफएम रेनबो ती वेला हो गया न्यूज हेडलाइंस दा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय भाईचारा पाकिस्तान नू उस दे माड़े कम्मां ते दुर्व्यहार लई जिम्मेवार ठहराएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज नवी दिल्ली विच लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनमे दा उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पलाओ झंडे वाले टैंकर एम टी मैरीवैकस ते सवार सारे 24 भारतीय चालक दल दे मैंबरां नू सुरक्षित बचा लिया है। ब्रिक्स खेतीबाड़ी सम्मेलन अज मध्य प्रदेश दे इंदौर विच शुरू होया। सम्मेलन विच 21 देशां दे प्रतिनिधि हिस्सा लै रहे ने। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश दे सीतापुर विच 250 मेगावाट दे सूरजी ऊर्जा प्रोजेक्ट नू मंजूरी दे दित्ती है। व्यापार मंत्रालय ने दा कहना है कि भारत दीआं बरामदां 12 सालां विच 866 अरब अमरीकी डॉलर तक वध गईआं ने। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अज नैशनल टैसटिंग एजेंसी हैडक्वार्टर दा दौरा कीता अते इस महीने दी 21 तरीक नू होण वाली री नीट प्रीख्या दीआं तैयारियां दा जायजा लिया। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 31 स्टार्टअप्स अते उना दे संस्थापकां नू 1 करोड़ रुपए तो वध दी सीड ग्रांट मंडी। पंजाब विच झोने दी लुआई लई तीजा पड़ा अज तो आरंभ हो गया है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी वल्लों पंजाब तो आम आदमी पार्टी दे आगू संजीव अरोड़ा नाल संबंधित हैप्टन स्काई रियलिटी लिमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच पंजाब उत्तर प्रदेश ते दिल्ली एनसीआर विच छापेमारी। पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जलंधर ते लुधियाना तो दिल्ली ते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक चलन वालियां 5 नवियां सुपर इंटीग्रल वोल्वो कोच बसां नू हरी झंडी दिखा के रवाना कीता। इस अनहोण तक दियां एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

ना जी ना, थोड़ी जिंदगी च रंग भरना रहा FM रेनबो। बदलते हुए मौसम विच तुसी रखना है अपना ख्याल, ते सोने सोने गीत इंजॉय करने ने FM रेनबो दे नाल।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्टूडियो कड़ी ते समा इस वक्त 9:04 ते 31 सैकंड हो रहे ने। ते जनाब आगाज हो चुका है, वेला आ गया है थोड़े सब दे फेवरेट वाले प्रोग्राम दिल चाहता है, जिते तुसी दिल दियां गल्लां करन वाले गीत जड़े आ सुन सकते हो। जेकर तुसी भी चाहुंदे हो कि थोड़ा भी कोई फरमाइशी गीत असी स्टूडियो तो लाइव थोड़े लिए प्ले करिए, तो जनाब तुसी अपने उस हिंदी पंजाबी फिल्मी गीत की फरमाइश सानू कर सकते हो 9855-10-10-27 ते। खास करके वह गीत जिहड़ी थोड़ी रूह नूं मिठा सुकून दिंदे ने, उन्हां गीतां दी फरमाइश तुसी कर सकते हो 9855-10-10-27 ते। जिवें मेरे तक थोड़े मैसेज पहुँचणगे, जिवें थोड़े तुसी मैसेज करोगे उस वक्त थोड़े मैसेज प्रोग्राम च शामिल किए जाएंगे। सो बहुत सारे दोस्तों ये शिकायत रहिंदी है भी साडा जिहड़ा मैसेज साडा जिहड़ा गीत प्ले नहीं होया। सो उन्हां दोस्तों पहले ही बेनती करदी है कि जनाब एक घंटे के प्रोग्राम के सारयां दी फरमाइश जिहड़ी है वह पूरी जिहड़ी नहीं हो सकती, तुसी इस गल नूं जरूर समझोगे, पर जिहड़े दोस्त हर रोज़ इको मैसेज करते हैं इको गीत की फरमाइश करते हैं, सो उन्होंने बेनती है जनाब अपनी फरमाइश बदल लिया करो, बाकियां दी फरमाइश

तेरा चित करता जब तपनी है वो जब हसनी है वो जब दूर दूर गुस्से नाल तकनी है और भी मेरा नहीं होर भी मेरा चित करदा मैं तन छेड़ा इस वास्ते छेड़न मेरा चित करदा।

हाथ जोड़ के कवाह मैं तैनूं ठंड पा दे मेरे कर जे हाथ जोड़ के कवाह मैं तैनू वंगा वाली बांधोरिए एक बार ते फड़ा दे मैनू एक बार ते फड़ा दे मैनू फड़न दी गल कीती इस वास्ते फड़न मेरा चित करदा मैं तैनू छेड़ा इस वास्ते छेड़न मेरा मेरा चित करदा।

रूप तू सजाया गोरिए तेरे रूप ने सजाया सारा पिंड नहीं रूप तू सजाया गोरिए तेरे रूप ने सजाया सारा पिंड नी ओ जे तू होवे मुल विकदी तेन लवा मैं बेच के जिंदनी ओ तेन लवा मैं बेच के जिंदनी जिंद दी मैं गल कीती इस वास्ते जिंद बेचन नू चित करदा मैं तेन छेड़ा इस वास्ते छेड़न पैरा मेरा चित करदा मैं तेन घेरा इस वास्ते घेरन मेरा चित करदा जदों टपनी है जदों हसनी है जदों कूर कूर

और मैसेज सर तक पहुंचे। संदीप मकड़, ज्योति, मन्नत, भरत, धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगा वाला चौंक गुराया तो सानू मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी थोड़े इस प्यार इस मोहब्बत दे ली। सो एक होर मैसेज पहुंचा है, लिखे भी दिल चाहता है सुप्रेम नमस्कार, आप कैसे हैं जी? जी मैं बहुत वधिया चढ़दी कला च, और उम्मीद करदा मैं तुसी भी वधिया होंगे चढ़दी कला विच होंगे सेहतयाब होंगे। और मैसेज सानू भेजिया सी सानू नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी ते दिशा ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हनुमानगढ़ फाजिलका तो सानू रमन अमन दिव्यांश ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा मैसेज कर रहे हैं, कहते कोई भी गीत जड़ा है तुसी चला दो अपनी पसंद का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो उत्तम नगर दिल्ली तो कमला रानी गीतिका खोरवाल भानु प्रकाश ते बोधराज खोरवाल मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसी तरह ही एक होर मैसेज सानू कर रहे ने मजनू का टीला तो कमल मधु सागर बालूजा, सतना एमपी तो उमंग आकांक्षा ते माही मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसी तरह ही एक होर मैसेज गांव घमंडियां सूरतगढ़ तो जगदीश ढुकिया प्रमीला ढुकिया ज्योति सरिता आमना साइना और विष्णु तमन्ना सचिन शिवम, जी इसे तरह ही एक होर दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो सानू मैसेज भेजा है हीरामणि परसमणि पुष्पेंद्रमणि और नाखेलाल वर्मा जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो इन तमाम दोस्तों की फरमाइश से मैं गीत प्ले करन जा रहा हूं। नदिया के पार मूवी का एक खूबसूरत ट्रैक इंजॉय करते हैं और मिलते हैं इस खूबसूरत गीत तो बाद थोड़िया प्यारिया जी फरमाइशों के नाल। 102.7 FM रेनबो न्यूज़ ऑन AIR ऐप से प्रोग्राम दिल चाहता है दा आनंद माण रहे हो, जिते तुसी अपने दिल तो मैसेज कर दे हो, जिस प्रोग्राम नू तुसी दिल तो प्यार कर दे हो।

0: तेरे पतले से तिखा तेरा नक नी,
1: भूल तेरे पतले से तिखा तेरा नक नी,
0: भूल तेरे पतले से तिखा तेरा नक।

0: एक और मैसेज अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर तो सानू मैसेज कर रहे ने, कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर, हरविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहिंदे वी प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, बहुत ही चंगा लग रहा है, कोई भी फिल्मी गीत कहिंदे सुना दिओ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और एक होर मैसेज आया कि पिंड हिरावाली जिला फाजिलका तो पक्के स्रोता सुभाष गोदरा, विमला गोदरा, इंदु पार्वती, हिमांशु कह रहे ने सत श्री अकाल सर जी, जी थानू प्यार भरी सत श्री अकाल। कह रहे ने कि प्रोग्राम दिल चाहता है लाइव सुन रहे हैं, अज आकाशवाणी के 90 वरे पूरे होने थानू बहुत बहुत मुबारक जी। थानू भी आकाशवाणी के 90 वरे दियाँ बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि थोड़े नाल ही असी हाँ और थोड़ी बेहतरी दे लई, थोड़ी सेहतयाबी दे लई असी हर समय समय से जिहड़े आ प्रोग्राम थोड़े एंटरटेनमेंट दे लई जिहड़े आ ओह पेश करदे रहीए। सो तुसीं बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा तुसीं प्रोग्रामां दी तारीफ कर रहे हो और कह रहे ने कि तुसीं इस तरीके दे नाल ही जिहड़ा प्रोग्राम पेश करदे रहो और साडा मैसेज कहिंदे प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल करो जी, थोड़ा मैसेज असी प्रोग्राम च शामिल कर लिया। और दोस्त ने फरमाइश की सी भी धर्मवीर मूवी का कोई भी कहिंदे कि गीत सानू सुनाया जाए, सो सारे ही दोस्तों की रली मिली फरमाइश से मूवी धर्मवीर दे विचों एक खूबसूरत गीत मैं थोड़े लिए प्ले करन जा रहा, उम्मीद है थानू ये गीत पसंद आएगा। 9855 10 10 27 नंबर पर तुसी मैसेज कर सकते हो और थोड़ा वो मैसेज जिवें पहुँचेगा उस वक्त लाइव स्टूडियो तो थोड़ा गीत थोड़े तक पहुँचावे।
1: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, हर थोड़े से भाई टूटे न

जी दोस्तों, ये दोस्ताना, ये मोहब्बत, ये यारियां, दिलदारियां, ये सांझा, ये मोहब्बतां इसे तरह ही बनिया रहन। इसी तरह ही यह मोहब्बत दे पैगाम असी वंडते रहिए, मोहब्बत दे मिठे बोल एक दूजे तक पहुँचाते रहिए। सो यह सिलसिला इसे तरह ही चलता रहे, यो आस यो दुआ करते हैं। 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम दिल चाहता है दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित दे नाल, और बहुत वधिया लग रहा है, बहुत चंगा लग रहा है। बहुत सारे दोस्त सानू मैसेज कर रहे हो और बड़ी बड़ी दूरों सानू मैसेज कर रहे हो, इन्ना प्यार, इन्नी मुहब्बत जिहड़ी मिल रही है वाकई किसी किसी के हिस्से आउंदी है। सो मैसेज भेजा सानू पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर ममता कीर्ति भूमिका अरोड़ा ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी।

जी राजस्थान तो सानू मैसेज कर रहे ने रजाक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान इरफान खान शुक्रिया जी कहिंदे सो बहुत बहुत वधिया मैसेज तुसी कर रहे हो जनाब बड़ी दूरों दूरों मैसेज कर रहे हो और जिहड़े मैसेज के जरिए तुसी जिहड़े ओ स्माइलीज जे भेज रहे हो बाकी बहुत देख के खुशी हो रही है बहुत बहुत चंगा लग रहा है सुमन हीर काम्या तनम हरविंदर युवराज यशिका पंजाब दसूहा तो मैसेज कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया जी एक और मैसेज साढ़े तक फूल चिंचोली तालुका तो मैसेज सानू कर रहे हैं जाकिर सुमैया सुबान सुमीर सलमा मुमताज दिलशाद नसीर बानूवी और बादशाह मुलानी बहुत बहुत शुक्रिया सो एक होर मैसेज पहुंचा जी ललित सोनी वीर जी थोड़ा कैंट च निघा स्वागत है जी बहुत दिनों बाद अज वीर जी नू नमस्कार करन दा मौका मिलया जी थानू भी प्यार भरी सत श्री अकाल

नमस्कार आदाब ललित जी, प्यार परी नमस्कार। थानू हमेशा तुसी खुश रहो, स्वस्थ रहो, साड़ी रूह नू सुकून मिल गया जी। और कह रहे ने कि सानू जड़ाया गीत सुना दो गुरदास मान की आवाज़ विच जी। जरूर थानू गीत असी सुनावांगे। लिख रहे ने कि परीक्षित, रिहान, एकता, कल्याणी, अनीता, विकास, कश्यप, बॉबी और कस्तूरबा नगर, जलंधर, कैंट, FM रेनबो, दिल से दिल तक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी थोड़े तक मैं शहीद मोहब्बत बूटा सिंह मूवी दे विच्चों एक खूबसूरत गीत प्ले करन जा रहे हैं। सो उम्मीद है थानू गीत पसंद आएगा।

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम दिल चाहता है दानंद मार रहे हैं अपने दोस्त ललित दिनाल और स्टूडियो कड़ी से समा 9:54 और 30 सेकंड हो रहे ने। प्रोग्राम दे विच एक करके सारे ही दोस्तों के नाम असी जरूर ले रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं भी थोड़ा मैसेज प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल हो गया होएगा और जड़े दोस्त का मैसेज शामिल नहीं होया वो आपां हुणी रीड कर दिंदे हां। गांधी चौंक बाड़मेर तो सानू मैसेज कर रहे ने बबरेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और दिनेश चौहान और बाबू राम जयपाल दी मैसेज कर रहे ने और इन्हों का मैसेज मैं लगता दोबारा मैसेज कर दिता इन्होंने जी। एक और मैसेज अंबाला हरियाणा तो मैसेज सानू कर रहे ने।

रवि कुमार राहुल जी। सो दोस्तों थोड़ा मैसेज प्रोग्राम दे विच असी शामिल कर रहे हैं। गांव नथाणा पंजाब तो हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता ते गीता, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहते किसी भी गीत दे विच साडा मैसेज जड़ी है वो शामिल जरूर करो। सो एक होर मैसेज रघुवीर नगर तो सानू मैसेज कर रहे ने, हसीना बानो एलिजा नायब ते लड्डू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो इन्होंने फरमाइश की थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की खूबसूरत आवाज़ में मूवी चर्स के एक खूबसूरत गीत, आओ सुनते हैं।

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम दिल चाहता है दा आनंद माण रहे सी अपने दोस्त ललित दे नाल और प्रोग्राम नू इत्थे वाइंड अप करन दा जनाब समा आ गया और जांदे जांदे कुछ दोस्तां दे मैसेज सीगे यशपाल धीमान कृष्णा धीमान और पूरी धीमान फैमिली मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तो सानू मैसेज कर रही सी बहुत बहुत शुक्रिया जी जी और इसी तरह ही एक होर मैसेज साडे तक पहुंचा सी राजेश कुमार कपूरथला तो सानू मैसेज कर रहे सी और इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया जी तुसी बहुत प्यार बहुत सत्कार दे नाल प्रोग्राम नू प्यार करदे हो सो बहुत बहुत शुक्रिया जी थोड़ा सो इसी आस इसी उम्मीद दे नाल प्रोग्राम जिहड़ा आ इत्थे ही वाइंड अप करन दा समय आ गया है दिल चाहता है प्रोग्राम इत्थे ही वाइंड अप कर दें पर तुसी कितें नहीं आना ठीक 10 बजे मिलदे हां गज़लां दे खूबसूरत प्रोग्राम दे विच ते तुहानू सुनावांगे खूबसूरत गज़लां नाल दे नाल खूबसूरत शायरी फिलहाल आखिरी ट्रैक

रात होती है हर शाम के बाद, तेरी याद आती है हर बात के बाद। हमने खामोश रहकर भी देखा है, तेरी आवाज आती है मेरी हर सांस के बाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टूडियो कोड से समा इस वक्त 10:01 हो रहे हैं। आगाज हो गया है थोड़े सब दे फेवरेट वाले प्रोग्राम शामी गजल का। गजलों की बेहतरीन दुनिया के विच, गजलों की बेहतरीन रंगीन दुनिया के विच थानू ले चलांगे। नाल दे नाल खूबसूरत शायरी होएगी, नाल दे नाल मिठे मिठे खूबसूरत गजल थोड़े लिए प्ले कीतियां जाणगियां। वाकई जदों किन्ने किसी की याद आती है तो बस उहदी याद ना दिन वेखती है, ना रात वेखती है, ना समा वेखती है। सो जदों उहदियां यादां दा घेरा पैंदा है तो बस दिलो दिमाग दे उपर उस इंसान दा सरूर छाया रहिंदा है, तो उस इंसान दा चेहरा साढ़े दिलो दिमाग दे उपर असर करता है। हर सुबह को तेरी याद आती है, हर शाम को तेरी याद आती है। सोचे भी तो क्या, देखे भी तो क्या, एक तेरी सूरत ही इस दिल को भाती है। हर सुबह को तेरी याद आती है, हर शाम को तेरी याद आती है।

कभी आहट कभी खुशबू कभी नूर से आ जाती है, तेरे आने की खबर हमें दूर दूर से आ जाती है। वाकई जदों किसी दे उम्र दा पता होवे कि कोई इंसान थोनू चाहुंदा है, दिल तो चाहुंदा है, जदों थोनू वो मिलदा है जां जदों तुसी उहनू मिलदे हो, तो उस वक्त जड़ा वो समा बजदा है, वो समा कितों भी मुल नहीं खरीदया जा सकता। जदों असी अपने नाल बैठ के दिल दीआं गल्लां करदे हां ते मन दे विच इक अजीब जी खुशी का एहसास हुंदा है कि जदों सानूं पता होवे कि किसी खास इंसान ने सानूं मिलन दे लई आउणा होवे, ते वो जड़ा इंतजार हुंदा है वो सब तो औखा हुंदा है, और इंतजार दीआं घड़ियां बीतण दा नां नहीं लैंदियां, और निगाह सिर्फ ते सिर्फ उस इंसान नूं लभदियां है। जागती आंखों से एक ख्वाब बुना है मैंने, जागती आंखों से एक ख्वाब बुना है मैंने, हजार चेहरों में तुझको चुना है मैंने, तेरी खुशबू से महक जाते हैं गुलाब, तेरी खुशबू से महक जाते हैं गुलाब, तेरे बारे में जब हवाओं से सुना है मैंने, तेरे बारे में ये हवाओं से सुना है मैंने, जागती आंखों से ख्वाब बुना है मैंने, जागती आंखों से ख्वाब बुना है मैंने।

की फितरत ना बदली है ना बदलेगी कभी, इश्क की फितरत ना बदली है ना बदलेगी कभी, शम्मा रोशन कीजिए आता है परवाना अभी। सुबह की मोहब्बत जड़ी है कदे नहीं।

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम शामे गजल दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित दे नाल। स्टोरी करते इस वक्त समा 10:22 और 4 सैकेंड हो रहे ने। गजलां दी इस बेहतरीन दुनिया दे विच नाल दी नाल तुहानू गजलां दे नाल बेहतरीन शायरी सुना रहे हैं।

जी नमस्कार, आदाब। 102.7 FM रेनबो ते इस वक्त समा 10:31:15 हो रहे हैं और वेला हो गया है प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है दा। खूबसूरत हिंदी गीत थोड़े लिए प्ले कीते जानगे कि महफिल रोशन हुई, हर चेहरा निखर गया, तेरा जिक्र हुआ, अंधेरा बिखर गया। सो इस रात दी गहराई दे विच खूबसूरत खूबसूरत शायरी और नाल दी नाल खूबसूरत गीत थोड़े लिए पेश कीते जानगे कि सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, हजार रातों में

एक हंसी रात होती है। निगाहें उठाकर जब देखते हैं वो मेरी तरफ, निगाहें उठाकर वो देखते हैं जब मेरी तरफ, मेरे लिए तो वही पल पूरी कायनात होती है, मेरे लिए तो वही पल पूरी कायनात होती है।

रुख किधर भी हो निगाहों का नजारा वही होता है, सभी चेहरों में चेहरा एक तुम्हारा ही होता है। कई आवाजें हैं पर नगमा तुम्हारा ही होता है, तुम ही तुम होते हो हम में, तुम ही तुम होते हो हम में, कुछ हमारा नहीं होता है। रुख किधर भी हो निगाहों का नजारा वही होता है।

रात को जब किसी की याद सताए, रात को जब किसी की याद सताए, ठंडी हवा जब जुल्फों को सहलाए, कर लो आंखें बंद और सो जाओ, क्या पता जिसका ख्याल है वो ख्वाबों में आ जाए।

मैंने सोचा नहीं था कि यूं तुमसे मुलाकात होगी, मैंने सोचा नहीं था कि यूं तुमसे मुलाकात होगी, तेरे मेरे प्यार की सनम इस तरह शुरुआत होगी। खामोशियों से भरी पड़ी थी जिंदगी मेरी, क्या पता था कि यूं तुझसे प्यार की बात होगी। मैंने सोचा नहीं था कि यूं तुमसे मुलाकात होगी, यूं तुमसे मुलाकात होगी।

मैंने सोचा नहीं था कि यूं तुमसे मुलाकात होगी, मैंने सोचा नहीं था कि यूं तुमसे मुलाकात होगी, तेरे मेरे प्यार की सनम इस तरह शुरुआत होगी। खामोशियों से भरी पड़ी थी जिंदगी मेरी, क्या पता था कि यूं तुझसे प्यार की बात होगी। मैंने सोचा नहीं था कि यूं तुमसे मुलाकात होगी, यूं तुमसे मुलाकात होगी।

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है दा आनंद मान रही हूँ अपने दोस्त ललित दिनाल। सुन लो मेरे दिल की बात कभी, सुन लो मेरे दिल की बात कभी, खुल के कर लो एक हसीन मुलाकात कभी। तुमसे मिलके चैन आता है मेरे दिल को, तुमसे मिलके चैन आता है मेरे दिल को, मुझ पे कर दो प्यार की बरसात कभी। सुन लो मेरे दिल की बात कभी।

सदियों से जागी आंखों को एक बार सुलाने आ जाओ। सदियों से जागी आंखों को एक बार सुलाने आ जाओ। है अगर तुमको भी प्यार तो ये प्यार जताने आ जाओ। नहीं समझता ये दिल, इस दिल को समझाने आ जाओ। बड़ा पाक है ये मोहब्बत का रिश्ता, बड़ा पाक है ये मोहब्बत का रिश्ता, ये रिश्ता मिलाने आ जाओ, ये रिश्ता मिलाने आ जाओ।

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। प्रोग्राम नू वाइंड अप करन दा समा आ गया, पर जांदे जांदे सिर्फ ते सिर्फ थानू यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी नू प्यार करना चाहिए। जेकर थोड़े कोल भी जिंदगी नू जिंदगी समझण वाले लोग ने या फिर थोड़े जिंदगी च भी कोई एहो जे लोग ने जिन्हां नू मिलके थानू लगदा है कि जिंदगी सिर्फ उन्हां दे नाल है, तो उन्हां नू जिंदगी दे विच्चों कदे भी जान ना दो, क्योंकि जिंदगी दे विच बहारां सिर्फ ते सिर्फ चंगे इंसानां दे नाल ही हुंदियां ने, और चंगे इंसान दा जिंदगी दे विच होना बहुत जरूरी है। कि हर पल पीछे छूटता जाता है, नया सवेरा सदा जिंदगी कहलाता है, कभी अतीत की गहराइयों में मत जीना, जिंदगी का मज़ा तो बस आज में आता है, जिंदगी का मज़ा तो बस आज में आता है। सो इस दे नाल ही प्रोग्राम एक प्यार का नगमा इत्थे ही वाइंड अप होंदा है, फिर किस